उन्होंने कहा, अपने परवरदिगार से इल्तजा कीजिए कि वो हमें ये बताए कि वो बैल किस तरह का हो। मूसा ने कहा, परवरदिगार फरमाता है कि वो बैल न तो बूढ़ा हो और न बछड़ा, बल्कि उनके दरमियान यानी जवान हो। सो जैसा तुमको हुक्म दिया गया है वैसा करो।

और यहूदी और ईसाई कहते हैं कि यहूदी या ईसाई हो जाओ तो सीधे रास्ते पर लग जाओ। ऐ पैगंबर, उनसे कह दो, नहीं, बल्कि हम दीन इब्राहिम इख्तियार किए हुए हैं, जो एक खुदा के हो रहे थे और मुशरिकों में से न थे।

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: دو پتے پتچھڑ کے पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में वो सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय University of Central Punjab.

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: आजादी नशे से, आजादी महरूमियों से,

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.
1: क्या आप अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाएंगे? एक पैकेट, एक डील और फिर पुलिस, हथकड़ियां, अदालत और जेल, और इसके बाद बदनामी, टूटे हुए रिश्ते और बर्बाद मुस्तकबिल। मंशियात का कारोबार किसी को कामयाब नहीं बनाता, ये सिर्फ दो चीज़ें देता है, जेल और बर्बादी। अपनी जिंदगी को जुर्म की कहानी नहीं, कामयाबी की मिसाल बनाए।
2: एक मंजिल मंशियात से पार।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: Let's get stress free. Tune in to FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: क्या आप अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाएंगे? एक पैकेट, एक डील और फिर पुलिस, हथकड़ियां, अदालत और जेल, और इसके बाद बदनामी, टूटे हुए रिश्ते और बर्बाद मुस्तकबिल। मंशियात का कारोबार किसी को कामयाब नहीं बनाता, ये सिर्फ दो चीज़ें देता है, जेल और बर्बादी। अपनी जिंदगी को जुर्म की कहानी नहीं, कामयाबी की मिसाल बनाएं।
2: एक कौम, एक मंजिल, मंशियात से पार, पाकिस्तान।

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یوسی پی
2: ایک نیا انداز
3: ایک نئی سوچ
2: ایک نئی پہچان
3: ایک نئی لگن
2: یو سی پی میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان
3: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے
2: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی معلومات کی اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی
3: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں یو سی پی نمبر ون
2: جب ملتی ہے لگن
3: محنت
2: کامیابی اور خلوص
3: تو بنتی ہے
2: یو سی پی کی دنیا
3: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6
2: سنتے رہیے
4: السلام علیکم لسنرز میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ محمود مخاطب ہوں آپ سے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب صرف اپلیکیشنز یا روبوٹکس تک محدود نہیں رہی بلکہ ڈیٹا بیس جیسے کور سسٹمز میں بھی انٹیگریٹ ہو چکی ہے اب ڈیٹا بیسز صرف ڈیٹا سٹور نہیں کرتے بلکہ آٹومیٹیکلی ٹیون ہوتے ہیں اپنی سیکیورٹی خود مینیج کرتے ہیں اور ڈیٹا کو انالائز کر کے آپ کو انٹیلیجنٹ انسائٹس بھی دیتے ہیں اس ریفرنس سے آج ہم بات کریں گے اے آئی پاورڈ ڈیٹا بیسز پہ جو ڈیٹا مینجمنٹ کی دنیا کو کمپلیٹلی ٹرانسفارم کر رہا ہے ہم جانیں گے کہ اے آئی کس طرح سے ماڈرن ڈیٹا بیسز کو اسمارٹر فاسٹر اور سیکیور بنا رہا ہے اور اس فیلڈ میں اسٹوڈنٹس کے لیے کون کون سی ریسرچ اپرچونیٹیز موجود ہیں اس دلچسپ ٹاپک پہ روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مس عائشہ ظہیر جو کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ اور انفارمیشن سسٹم کا گہرا تجربہ رکھتی ہیں تو وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم میس
5: وعلیکم السلام کیسی ہیں میں ٹھیک ہوں آپ سنائیں آپ کیسی ہیں
4: بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا
5: دیٹس مائی پلیزر
4: چلیں میس وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں
5: جی جی
4: سب سے پہلے تو ہمارے سننے والوں کو آپ بتائیں کہ اے آئی پاورڈ ڈیٹا بیسز کیا ہوتی ہے
5: اچھا اب یہ جو ٹرمز ہیں نا جیسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے مشین لرننگ ہے یا ڈیٹا بیس ہے یہ اب ہم سب لوگوں کے لیے نون ہے جیسے کہ فار ایگزامپل اگر ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کریں تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو مشینز ہیں انہیں ہم آرٹیفیشیلی اتنا انٹیلیجنٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہیومن سے زیادہ اچھی طرح ہمارے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہیں
4: بالکل ایسے
5: اور یہ سب وہ کیسے کر رہی ہیں کیونکہ ان کو ڈیٹا پرووائڈ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو اتنا اسمارٹ بنا سکیں
4: ٹھیک ہے
5: اسی طرح اگر ہم مشین لرننگ کی بات کر لیں کیونکہ جب ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں تو مشین لرننگ کی بھی بات ساتھ میں ہمیں کر لینی چاہیے
4: جی
5: مشین لرننگ بھی یہی ہے کہ آپ بہت سارا ڈیٹا جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اس سے اپنے ماڈل کو ٹرین کرتے ہیں اور اپنی مشین کو لرن کرواتے ہیں تاکہ وہ فیوچر کی پریڈکشن کر سکے
4: بالکل
5: اب ان دونوں کاموں کے لیے ہم نے کس کو یوز کیا ڈیٹا بیس کو یوز کیا ڈیٹا کو یوز کیا اور ڈیٹا بیس کی فنکشنالٹیز کو یوز کیا اب یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہو کیا رہا ہے اب ہم ایکچولی یہ کر رہے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کے رولز اپلائی کر کے اپنے ڈیٹا بیس کو زیادہ افیکٹو اور ایفیشینٹ بنا رہے ہیں یہ سارا جو کانسیپٹ ہے اس وقت یوز ہو رہا ہے جس کے بعد جو ہمیں ڈیٹا بیس مل رہا ہے اسے ہم کہہ رہے ہیں اے آئی پاورڈ ڈیٹا بیس یعنی کہ وہ اب اپنی پرفارمنس کو آپٹیمائز کر رہا ہے یعنی ڈیٹا بیسز جو ہیں وہ اپنی پرفارمنس کو آپٹیمائز کر رہے ہیں فالٹ کو خود ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ سیکیورٹی کو بھی انہانس کر رہے ہیں اور یہ سب کام وہ کیسے کر رہے ہیں کہ وہ اے آئی اور مشین لرننگ کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس استعمال کی جا رہی ہیں ان کے اوپر
4: بالکل صحیح ہو گیا یہ تو مس ہو گیا اے آئی پاور ڈیٹا بیس کا تو ہمارے سننے والوں کو ذرا ٹریڈیشنل ڈیٹا بیس کے بارے میں بتا دیں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے
5: اچھا ٹریڈیشنل جو ڈیٹا بیس ہے نا उसका तो हमें ऑलरेडी पता है कि आपने एक डेटाबेस डिज़ाइन किया, फिर उसमें डेटा को स्टोर किया, स्टोर करने के बाद उसको आपने रिट्रीव किया। अब ये स्टोरेज और रिट्रीवल का काम जो है ना वो काफ़ी एफिशिएंटली हो रहा है, वो आपके ट्रेडिशनल डेटाबेस में भी काफ़ी एफिशिएंटली हो रहा है। क्वेरी को एफिशिएंटली लिखना, कहाँ पे आपने जॉइन यूज करना है, कहाँ पे आपने नेस्टिंग यूज करना है, वो सब कुछ वो ऑलरेडी कर रहा है। लेकिन देखें विथ पैसेज ऑफ टाइम डेटा कितना ज़्यादा हो गया, डेटा का स्केल कितना ज़्यादा हो गया। आई मीन अब आप ही देखें कि हमारा यूजेज कितना ज्यादा हो गया है और हम कितना ज्यादा डेटा खुद स्टोर कर रहे हैं। 10-12 साल पहले ऑनलाइन शॉपिंग का इतना तसव्वुर भी नहीं था जितना अब हम ये सारा का सारा डेटा जो है वो यूटिलाइज भी कर रहे हैं, एज इन हमें सब कुछ ऑनलाइन मिलता भी है और फिर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते भी हैं। इसी के अलावा अगर हम सोशल मीडिया की लेट्स सपोज बात करें तो 10-12 साल पहले क्या हम लोग इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव थे जितना इस वक्त हैं? तो ये सारी चीजें मिला के ना स्केल बहुत ज्यादा हो गया एक्चुअली डेटा का, और डेटा का स्केल ज्यादा होने की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो गई है। इसलिए अब जो के मॉडर्न डेटाबेसिस है ना उनमें जो मसले मसाइल आए हैं ना उनके सोल्यूशन के लिए जो है ना आपको AI पावर्ड डेटाबेस की जरूरत पड़ी। यानी वो क्या क्या कर सके AI पावर्ड डेटाबेस, वो अपनी सेल्फ ट्यूनिंग कर सके, अपनी सेल्फ हीलिंग कर सके, इसके अलावा जो है ना वो प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर सके। ये सारे फीचर्स जो है ना अब आपको AI डेटाबेस जो है ना वो प्रोवाइड कर,
6: यानी इंसानों का काम आसान हो गया।
5: जी बिल्कुल, आसान भी हो गया और जो आपके पास ह्यूमन एरर के चांसेस होते हैं हमने उनको भी कम करने की कोशिश की है। बिल्कुल, अगर इसी के मैं 2-3 अगर आपको एस्पेक्ट्स बताऊं
6: जी जरूर।
5: इसके सबसे पहले तो आता है कि आपके पास जो है ना वो क्यूरी ट्यूनिंग की अगर हम बात करें तो वो वाली चीज आ जाती है कि लेट सपोज आपकी एक क्वेरी है, उसे चलने में एक स्पेसिफिक टाइम लगता है, आप उसको ऑब्जर्व करते हैं कि भाई टाइम बहुत लग रहा है इस क्वेरी को रन होने में, तो आप उसके हिसाब से कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशंस कर सकते हैं अगर हम AI पावर डेटाबेस की बात करें। इसके अलावा ऑटोमेशन, ऑटोमेशन का क्या मतलब है कि आपके पास जो है ना वो पैचिंग के लिए अगर आपने यूज करना है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले ये होता था कि आपने सोचा होता था कि आपने पैचिंग करनी है लेकिन उसके लिए आपने कोई ना कोई टाइम स्केड्यूल बनाया होता था, लेकिन अब जब भी आपको जरूरत हो आप डेटाबेस को अपडेट कर सकते हैं बग्स को रिमूव करने के लिए, सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए या नए फीचर ऐड करने के लिए। अब पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि जब भी आपने इस तरह के कोई चेंजेस करने होते थे तो आपको थोड़ी देर के लिए सिस्टम को शट डाउन करना पड़ता था,
6: तो सारे काम रुक जाते थे।
5: एग्जैक्टली, तो आपका डाउन टाइम आया
6: जी।
5: इसके अलावा जब आप चेंजेस कर रहे हैं देयर इज पॉसिबिलिटी कि जब आप उसे दोबारा रिस्टोर करें
6: तो उस तरह काम
5: ही ह्यूमन एरर आए। बिल्कुल, वेरी गुड। अब ये वाले सारे मसले जो थे ना हमें पता है कि ऑलरेडी हमारे पास हो सकते हैं जब हम ऑटोमेशन की बात करते हैं, और इन सबको ओवरकम किसने किया जब आपने AI पावर्ड डेटाबेस यूज किया। इसके अलावा स्केलेबिलिटी, आज हमने सिस्टम खोला किसी भी ऑनलाइन स्टोर की बात कर लें जिसमें आपके पास सेलर भी होता है और उसके साथ साथ आपका कस्टमर भी होता है। अब सेलर जो है ना वो प्रोडक्ट्स ऐड करता जा रहा है, आपने शुरू किया, आपको लगा कि बस ठीक है 16 GB रैम भी काफी है और काम सही चल रहा है, विद पैसेज ऑफ टाइम सेलर ने और ज्यादा प्रोडक्ट्स ऐड करने शुरू कर दिए, कस्टमर ने भी और ज्यादा ऑर्डर्स करने शुरू कर दिए, मतलब आपके पास डेटा बढ़ता गया। अब आपने उसे क्या किया, 16 से क्या कर सकते हैं, आप 64 GB कर देंगे, रैम कर देंगे, आप CPU फास्टर ले आएंगे, आप डिस्क ले आएंगे या एक्सपेंसिव हार्डवेयर ले लेंगे। वही वाली बात है कि ये सारा क्या है, ये सारा आपका एक तरह से
6: एक्सपेंस
5: बढ़ा रहा है, और साथ ही साथ वही वाली बात कि जब आप ये सारे काम कर रहे होंगे, मतलब जब आप सारे चेंजेस ला रहे होंगे तब आपका डाउन टाइम भी आ रहा होगा, तब हो सकता है ह्यूमन एरर के चांसेस भी हैं। अब इन सब को भी कैसे AI पावर डेटाबेसेस ने ओवरकम किया कि आप एक सिस्टम की जगह मल्टीपल सिस्टम्स लगाएं, अपने डेटा को स्प्लिट करें और उसी स्प्लिटेड डेटा में आप फिर क्या करें, पैरेलल प्रोसेसेस चला दें। तो अगर आपकी पहले क्वेरी लेट सपोज 16 GB के ऊपर चलने में 1 सेकंड लेती थी, अब आपका डेटा 64 GB हो गया है, तो अगर आपने उसे स्प्लिट कर लिया है और पैरेलल हर एक डेटाबेस के ऊपर अलहदा आपकी क्वेरी चल रही है एक ही पैरेलल टाइम में, तो बेसिकली वो उतने ही टाइम में चल जाएगी और आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा। सो ये कुछ फीचर्स हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ जो कि AI पावर डेटाबेस की वजह से हमें मिलते हैं।
6: अच्छा मिस, आपने भी बात किया कि AI पावर डेटाबेस जो है वो सेल्फ ट्यूनिंग भी करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन भी खुद से करके देते हैं। जब तक ये ह्यूमंस खुद करते थे तो क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं?
5: अच्छा, जब हम क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब है जो हमारी क्वेरी है जो कि स्लो चल रही थी उसको एनालाइज करके हमने फास्ट बना दिया
6: जी।
5: इसकी अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताऊं तो लेट सपोज अगर हमारे पास यही सेलिंग और परचेजिंग वाला ही हम कोई जो है ना वो एप्लीकेशन की या डेटाबेस की बात कर लेते हैं, तो उसमें हमें पता है कि हर कोई जो है ना वो प्रोडक्ट की टाइप के ऊपर सर्च कर रहा है, टाइप के ऊपर सर्च कर रहा है। ठीक है, टाइप के ऊपर सर्च करने का क्या मतलब है कि आप एक स्पेसिफिक जो है ना वो प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिंग की बात कर लें, ब्रेसलेट की बात कर लें, शू की बात कर लें
6: जी।
5: जब ऐसी एक दो क्वेरीज हमने लिखी तो उसे पता लग गया ओके आप प्रोडक्ट टाइप के ऊपर जो है ना वो कंडीशन लगा रही हैं और आपको एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट टाइप है जो अपने रिजल्ट में चाहिए
6: जी।
5: तो वो इस लेवल के ऊपर क्या कर लेता है, इंडेक्सिंग कर लेता है। इंडेक्सिंग का क्या मतलब होता है, इंडेक्सिंग का मतलब ये होता है कि जितना भी उसके पास डेटाबेस पड़ा हुआ है ना उसमें वो हर प्रोडक्ट टाइप पे अपने पास एक मैप बना के रख लेता है कि इस वाली रो में ये वाला डेटा पड़ा हुआ है। तो अगर मैं लेट सपोज लिखती हूँ कि मुझे एक ब्रेसलेट चाहिए, तो वो सारे डेटाबेस को दोबारा से देख के नहीं आएगा बल्कि सिर्फ उस वाली रो पे जाएगा जहां जहां ब्रेसलेट प्रोडक्ट टाइप है और बस वहां से डेटा उठा के मेरे पास ले आएगा
6: जी।
5: ठीक है, तो एक तो वो वाली बात है कि क्वेरी की आपकी ऑप्टिमाइजेशन होगी, पहले जो क्वेरी चलाने में जितना भी टाइम लगा रही थी वो 10 times फास्टर होगी क्योंकि वो पूरे डेटाबेस को देख ही नहीं रही
6: जी।
5: वो तो सिर्फ उस डेटा के पास जा रही है जहां जहां आपके पास इंडेक्सिंग के मुताबिक वो वाली प्रोडक्ट टाइप पड़ी हुई है।
6: एग्जैक्टली
5: exactly. फिर आगे आपके पास के आपकी जो है ना वो मेमोरी की भी ट्यूनिंग साथ साथ होती रहती है, यानी कि वो रैम को और कैशे को भी उतना ही एफिशिएंटली यूज कर रहा है। अब इसका फायदा जैसे आपने पूछा कि क्या है कि मैनुअल ट्यूनिंग जो है उन्हें टाइम ज्यादा लेती थी, वही वाली बात है डेटाबेस एनालिस्ट ने काम करना है, उसे समझ आ रही है नहीं आ रही है, उसे सही तरह से पता लग रहा है या नहीं लग रहा, इस चीज के ऊपर काफी सारी चीजें डिपेंड करती थी। ह्यूमन एरर की वजह से भी देयर इज पॉसिबिलिटी कि आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाए। फिर क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है कि आपकी उतनी एफिशिएंट ना हो सके जितनी ज्यादा एफिशिएंट ये AI पावर्ड डेटाबेस सिस्टम्स कर सकते हैं। इंडेक्सिंग भी प्रॉपरली हो सकता है आपसे ना हो सके, आपको समझ ही ना आए कि किस पे इंडेक्सिंग कब करने की जरूरत है, क्योंकि हम भी देखें लहदे लहदे तरह से जब हम आम हालात में जाएंगे शॉपिंग करने के लिए तो हो सकता है हम किसी प्रोडक्ट का नाम लिखें, हम सेल के दिनों में जाएंगे तो देयर इज पॉसिबिलिटी हम ये कहें जी 70% जिस चीज के ऊपर सेल है ना हमें वो वाले प्रोडक्ट्स दिखा दो, बेशक जो भी है बस दिखा दो। तो उस टाइम पे इंडेक्सिंग आपकी किसके ऊपर होनी है कि सेल इस वक्त कौन से वाले प्रोडक्ट। एग्जैक्टली, तो लार्ज स्केल पे जब डेटा होता है ना इस पे मैनुअल काम करना, इसको ऑप्टिमाइज करना मुश्किल होता जाता है और इन कामों को आसान करता है हमारे लिए AI पावर्ड डेटाबेस।
6: लिसनर्स, वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सुनते रहें FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: சுக்கு. When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia. वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीबी की दुनिया। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे AI पावर डेटाबेसिस की। अपनी गुफ्तगु के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। मिस हमारे सुनने वालों को बताइएगा कि AI पावर डेटाबेसिस का इस्तेमाल कौन कौन सी फील्ड में होता है।
1: अच्छा, अगर यूज की बात करें तो वो तो हमें हर जगह ही नजर आ रहा है, लेकिन अगर हमने स्पेसिफिकली बात करनी है तो हम इसका 3 फील्ड्स में जिक्र कर सकते हैं जो मेरे ख्याल में इस वक्त मेरे जहन में सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे लगती हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है फ्रॉड डिटेक्शन, के आपके जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं उनमें फ्रॉड को डिटेक्ट कर लेता है आपका अगर AI पावर्ड सिस्टम हो। इसकी एक दो एग्जांपल्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये कि अगर एक नॉर्मल एक बंदा लॉग इन कर रहा है, लेट सपोज मैं अपने सिस्टम को लॉग इन करती हूँ, मैं अपने सिस्टम पे एक्टिव हूँ और मैं हमेशा लॉग इन जो है ना, लेट सपोज पाकिस्तान से कर रही हूँ, मैंने लास्ट लॉग इन जो किया था वो पाकिस्तान से किया था 2 घंटे पहले, और 2 घंटे बाद मेरा लॉग इन हो रहा है यूरोप की किसी कंट्री से, तो वो फॉरन से पहले डिटेक्ट कर देगा और आपको बता देगा, आपको जो है ना वो अलर्ट सेंड कर देगा कि भाई ये वाला मसला आया है, इस बंदे की लोकेशन इतनी जल्दी चेंज नहीं हो सकती,
0: पॉसिबल ही नहीं है,
1: पॉसिबल नहीं है, तो वो अलर्ट भेज देगा। अब अलर्ट को आगे से आपने कैसे यूज करना है वो आपकी अपनी मर्जी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे साथ ये वाला काम हो रहा हो कभी हमारे किसी अकाउंट से, तो हमें सबसे पहले एक ईमेल आ जाएगी कि भाई आपको आपका जो अकाउंट है ना वो इस जगह से एक्सेस किया गया है, तो आप देख लें, और उसके नीचे ऑप्शन भी होती है, हम बता देते हैं इट्स ओके, मतलब कोई इशू नहीं है, और अगर हमने कोई एक्शन लेना हो तो हम एक्शन भी ले लेते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है, जैसे लेट सपोज मैं अपना अकाउंट यूज करती हूँ, मेरा बैंक अकाउंट है, मैं हमेशा उसे 10-20 हज़ार की ट्रांजेक्शन कराती हूँ, और एकदम से मैंने पहली बार उससे ट्रांजेक्शन करा दी अपनी जितनी मेरी लिमिट थी एक दिन की, लेट सपोज 2.5 लाख सेंड कर दिया,
0: नॉर्मल
1: एग्जैक्टली, तो वो साथ ही क्या करेगा, वो फ्लैग जो है ना वो रेस कर देगा कि भाई ये कुछ सस्पिशियस हुआ है। फिर वही वाली बात हुई, इसका ये मतलब नहीं है कि गलती हुई होगी, नॉर्मली ये होता है कि जब इस तरह का कोई फ्लैग रेज होता है तो हमें बैंक की तरफ से कॉल आ जाती है, भाई आपकी तरफ से ये हुई है, अगर ट्रांजेक्शन ठीक हुई है ना, तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, साथ ही एक्शन ले लेते हैं फौरन, के बजाय इसके कोई किसी को हम डेटा देते, वो डेटा को देखता, देखने के बाद 2-3 दिन के बाद बताता कि ये एग्जैक्टली हमने उस एनालिसिस के टाइम को निकाला, उसने उसी टाइम बता दिया भाई कुछ गड़बड़ हुई है, और जरूरी नहीं गड़बड़ हो, फ्रॉड डिटेक्शन है, जरूरी नहीं हो हम उसे कॉल करें वो कहें हाँ जी हाँ जी मैंने की है, तो बात खत्म हो गई। फिर उसके बाद ये आता है कि कस्टमर जो है ना वो पासवर्ड जो बता रहा है या लॉगिन के साथ जो पासवर्ड बता रहा है वो इस तरह का बता रहा है, कभी कभी आप भी जब लॉगिन करती होंगी तो देर इज पॉसिबिलिटी कि वो जो क्वेटी जो आपके पास होता है, आपके पास जो है ना वो कीबोर्ड होता है, उसमें हमें भी पता है कि ये वाले पास होते हैं, अल्फाबेट्स पास होते हैं, तो कभी कभी गलत प्रेस हो भी जाता है, लेकिन अब बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे कि एक बंदे का आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख के चेक करें ये तो नहीं चल जाएगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल के देख रहे हैं,
0: अटेम्प्ट्स कर रहे हैं,
1: हाँ, और ऐसी अटेम्प्ट्स कर रहे हैं जिनका दूर दूर तक आपके पासवर्ड से कोई ताल्लुक भी नहीं है, तो इस तरह की सूरत में भी वो अलर्ट जनरेट करता है। और कभी कभी जैसे मोबाइल फोन पे होता है, हम गलत बार बार अगर अपने फिंगरप्रिंट्स दें तो आपको कहता है थोड़ी देर, या पैटर्न गलत दें तो आपको कह देता है थोड़ी देर रुक जाओ, इसी तरह वो थोड़ी देर के लिए ना आपके सिस्टम को ब्लॉक कर देगा, और साथ ही आपकी जो रिकवरी वाली जो भी ईमेल होगी ना उसमें आपको बता भी देगा कि आपका सिस्टम जो है ना वो एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है, आप ही हैं। इसके अलावा एक चीज क्या है कि आप बार बार क्वेरी कर रहे हैं कॉन्फिडेंशियल डेटा को, आप बार बार क्वेरी भेज रहे हैं उस डेटा को जो कि कॉन्फिडेंशियल है, इस सूरत में भी पता लग जाएगा कि इस लोकेशन से, इस ईमेल आईडी से, इस यूजर नेम पासवर्ड से ये वाला काम हो रहा है। अब ये काम क्या पहले नहीं होते थे, होते थे, लेकिन इस एनालिसिस में जो टाइम लगता था ना आपका AI पावर्ड जो डेटाबेस है ना उसने वो कम किया है। पहला हो गया फ्रॉड डिटेक्शन, दूसरा आपके पास हो गया चर्न प्रिडिक्शन। ये किसको कहते हैं, इसको कहते हैं कि आप पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि आपका जो कस्टमर है उसका आपके सर्विसेज के साथ जो रिलेशनशिप है वो खत्म होने की तरफ जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पहले तो एक यूजर था, वो महीने में 2-2 दफा ऑर्डर कर रहा था, लेकिन अब उसने क्या किया है, उसने ऑर्डर करना
0: छोड़ दिया है
1: या कम कर दिया है, तो वो उसे प्रिडिक्ट करना शुरू कर देता है। कैसे प्रिडिक्ट करता है, वो अब आपकी ऐप को कम खोलता है, आपकी ऐप को ओपन ही नहीं करता, परचेज कम करता है या उसने किसी किस्म का नेगेटिव कमेंट दिया हो। अब ये वो यूजर है जो या कस्टमर है आपका जो पहले आपकी सर्विसेज यूज कर रहा था, विद पैसेज ऑफ टाइम वो इस तरफ जा रहा है कि शायद अब वो यूज ना करे। तो AI पावर्ड सिस्टम आपको पहले ही बता देगा ये आपके यूजर्स हैं जो पहले एक्टिव थे।
0: जी जी, आपने भी बात की कि वो डिटेक्ट कर लेगा, डिटेक्ट तो कर लिया उसने, इसके अलावा भी वो कुछ उसको दोबारा ट्रैक करने के लिए भी कुछ
1: बिल्कुल
0: प्रिकॉशनरी मेजर्स लेगा या नहीं?
1: बिल्कुल, ये मैं इसी तरफ जा रही थी कि वो आपको बता देगा कि भाई ये आपके एक्टिव यूजर थे लास्ट इस डेट तक, लेकिन अब ये एक्टिव नहीं है। अब क्या होता है, कंपनीज की अपनी या जो जिनका सिस्टम होता है या एप्लीकेशंस होती हैं, उनकी अपनी ना डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज होती हैं जो वो यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप थोड़ी देर के लिए अगर हम ये राइड वाली जो एप्लीकेशंस हैं वो यूज ना कर रहे हो तो ऐसे ही आपको दे देंगे 20% डिस्काउंट आ गया जी आपके पास। हाँ, या जैसे आप अगर कहीं से कर रही थी, शॉपिंग कर रही थी, वो आपको कहेंगे हाँ जी भाई आप यू आर द लकी वन के हम आपको ना वो फ्री कर रहे हैं, आपकी डिलीवरी चार्जेस फ्री कर रहे हैं। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है कि पहले तो आप उनकी सर्विसेज को यूज कर रहे थे, अब आपने कम कर दिया है और उन्होंने डिटेक्ट करके बता दिया भाई ये आपके रेगुलर कस्टमर थे, ये जा रहे हैं आपके हाथ से, और उसके हिसाब से आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं। और इस प्रेडिक्शन की वजह से आप अपने यूजर्स को क्या कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। लास्ट एक पॉइंट है जो मैं बताना चाहूंगी कि जो कंपनीज भी यूज करती हैं वो भी इसी तरह की चीज ही है बेसिकली जिसके लिए यूज करती हैं, कि जैसे आपने भी देखा होगा कि आपने, चलो ठीक है, आपने गाना एक सर्च कर लिया, आ भी गया, आपने सुन भी लिया, ठीक है, अब ये तो है सारा डेटाबेस का काम
0: जी।
1: लेकिन जब आपने गाना लिखा, सर्च किया, वो आया, तो नीचे उसने ना आपको एक गानों की लिस्ट दे दी।
0: हाँ जी।
1: अब वो गानों के लिस्ट रैंडम नहीं होती, वो डिपेंड करता है आपने अभी जो गाना लगाया था वो कौन से टाइप का है, उसी टाइप की, या आपने जो पहले गाने सुने हुए होते हैं उन्हीं से रिलेटेड या उन्हीं की जो टाइप होती है वैसे ही गाने आपको नीचे जो है ना वो प्रेडिक्ट करना शुरू कर देता है ताकि आप उन्हें सुनते रहें। इसी तरह से नेटफ्लिक्स भी इसी के ऊपर काम कर रहा है, यूट्यूब भी इसी सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है कि वो आपको आपकी मर्जी के आपके किस्म का सारा जो है ना वो कॉन्टेंट प्रोवाइड करना शुरू कर देता है कि आप ये वाला कॉन्टेंट जो है ना वो यूज करते रहें
0: अपने यूजर्स को अट्रैक्ट
1: करने के लिए, और इसलिए कि वो कहीं और जाए ना, वो आप ही के सिस्टम को यूज करते रहें। और मतलब आप भी मैं भी एक्सपीरियंस करते हैं, आप एक कोई अगर फिल्म देखते हैं, लेट्स सपोज हॉरर फिल्म देख लेते हैं, तो वो आपको नीचे सारी रिकमेंडेशन में और हॉरर फिल्म्स दिखाना शुरू कर देता है। आप कॉमेडी देख लें तो कॉमेडी दिखाना शुरू कर देगा। तो बेसिकली वो एंगेज रखना चाहता है अपने कस्टमर को, तो उसके लिए भी इसके डिफरेंट फीचर्स को यूज कर सकते हैं।
0: अभी तक आपने बहुत डिटेल से बताया कि किस तरह ये पावर डेटाबेस काम कर रही है, फ्यूचर में इसका रोल क्या होगा उसके बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं प्लीज।
1: अच्छा, अब फ्यूचर की भी अगर बात करें ना, तो हमें भी पता है कि हम इस वक्त टेक्नोलॉजी के ना इवॉल्व होने वाले दौर में हैं। तो बेसिकली हमें पता है कि फीचर्स आगे हुए हैं, लेकिन वो विद पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व होके ज्यादा बेहतर होते जा रहे हैं। तो हमें फ्यूचर की अगर हम बात करें तो ट्यूनिंग जो है वो हम कह सकते हैं कि ज्यादा बेहतर हो सकती है। फ्रॉड डिटेक्शन जो है ना उसमें भी चांसेस हैं, उसमें अभी आपके पास गैप है वो फिल हो सकता है। और अगर मैं एक ऐसे फीचर की बात करूं जो कि थोड़ा सा न्यू है, वो वैसे उसको चैट जीपीटी ने काफ़ी हद तक कैटर कर लिया हुआ है, लेकिन वो ये है कि आप नेचुरल लैंग्वेज में क्वेरी लिखें। मतलब आप क्वेरी ठीक नहीं लिख रहे, वो कह रहा है मुझे बता दो तुम क्या चाहते हो, मैं क्वेरी भी खुद लिख लूंगा। उसने इस हद तक जो है ना वो अपने हाथ में ले लिया है सब कुछ कि भाई मैं क्वेरी को ऑप्टिमाइज तो कर रहा हूँ, मैं डेटाबेस को भी ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ, मैं डेटाबेस की पैचिंग, मैं डेटाबेस का बैकअप सारा कुछ खुद कर रहा हूँ, तुमसे अगर क्वेरी भी नहीं ना लिखी जा रही तो वो भी मुझे दे दो, मैं क्वेरी भी लिख देता हूँ। तो वो बेसिकली क्या है कि अब आप अपनी नेचुरल लैंग्वेज में, उर्दू में, रोमन उर्दू, इंग्लिश, जिसमें भी बताएंगे कि भाई मुझे ये वाला काम करवाना है, तो वो उससे रिलेटेड क्वेरी भी खुद लिख लेगा कि मैं ये वाला काम भी खुद कर लेता हूँ, ताकि जो जॉइन श्वाइन भी लगाने हैं ना वो भी मैं खुद ही लगा लूँ, ताकि वो क्वेरी बेहतर तरीके से और ऑप्टिमाइज तरीके से काम कर सके।
0: क्या स्टूडेंट्स AI पावर डेटाबेस पर प्रोजेक्ट या रिसर्च कर सकते हैं?
1: अच्छा, वही वाली बात आ गई कि AI भी है, डेटाबेस भी है, मशीन लर्निंग भी है, और ये सब इस वक्त जो है ना वो हॉट सेलिंग टॉपिक्स हैं अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, या अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस की, या ओवरऑल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड की। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, आपके ऑलरेडी जो इसमें डिफरेंट फीचर्स आ चुके हैं आप उन्हें ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो। आप चाहो तो आप नए नए फीचर्स के ऊपर भी काम कर सकते हो, आप नए नए फीचर्स के बारे में भी सोच सकते हो। जैसे वही वाली बात है, फ्रॉड डिटेक्शन, आप इसे और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। स्केलिंग की बात करें, आप इसे और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। पैरेलल जो आपकी क्वेरी चलनी है उसके लिए किसी नए आप जो है ना वो उसके ऊपर एल्गोरिदम के ऊपर काम कर सकते हैं। या फिर इस वक्त जो काम चल रहा है कि नेचुरल लैंग्वेज में आपको एक क्वेरी मिलती है, कि मतलब ह्यूमन नेचुरल लैंग्वेज में क्वेरी दे रहा है और आप उसके ऊपर क्वेरी बना रहे हैं, आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं।
0: वॉइस क्वेरीज के ऊपर भी काम हो सकता है।
1: बिल्कुल, वॉइस क्वेरी के ऊपर भी काम हो सकता है। इसके अलावा जो है ना, आप डिफरेंट तरह की डिफरेंट फीचर्स को मर्ज करके एक कोई नया फीचर भी बना सकते हैं जो कि आप प्रोवाइड कर रहे होंगे अपने यूजर्स को, कि वो उसे यूज कर सकें।
0: लिसनर्स, आज के प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हात आ चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि AI पावर डेटाबेसिस के हवाले से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसके साथ ही हम अपनी ऑनरेबल गेस्ट मिस आयशा का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया।
1: You're welcome.
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: मुझे भी।
0: लिसनर्स, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहें FM 92.6 UCP की दुनिया। मी योर होस्ट आमना महमूद साइनिंग ऑफ।

0: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: क्या आप अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाएंगे? एक पैकेट, एक डील और फिर पुलिस, हथकड़ियां, अदालत और जेल, और इसके बाद बदनामी, टूटे हुए रिश्ते और बर्बाद मुस्तकबिल। मंशियात का कारोबार किसी को कामयाब नहीं बनाता, ये सिर्फ दो चीज़ें देता है, जेल और बर्बादी। अपनी ज़िंदगी को जुर्म की कहानी नहीं, कामयाबी की मिस

www.ucp.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: क्या आप अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाएंगे? एक पैकेट, एक डील और फिर पुलिस, हथकड़ियाँ, अदालत और जेल, और इसके बाद बदनामी, टूटे हुए रिश्ते और बर्बाद मुस्तकबिल। मंशियात का कारोबार किसी को कामयाब नहीं बनाता, ये सिर्फ दो चीज़ें देता है, जेल और बर्बादी। अपनी जिंदगी को जुर्म की कहानी नहीं, कामयाबी की मिसाल बनाएं।
1: एक ख्वाब, एक मंजिल, मंशियात से पार, पाकिस्तान।

آزادی نشے سے، آزادی محرومیوں سے۔ Ladies and gentlemen.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP Ki Duniya. Ki Duniya, Ki Duniya.

0: क्या आप अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगाएंगे? एक पैकेट, एक डील और फिर पुलिस, हथकड़ियाँ, अदालत और जेल, और इसके बाद बदनामी, टूटे हुए रिश्ते और बर्बाद मुस्तकबिल। मंशियात का कारोबार किसी को कामयाब नहीं बनाता, ये सिर्फ दो चीज़ें देता है, जेल और बर्बादी। अपनी ज़िंदगी को जुर्म की कहानी नहीं, कामयाबी की मिसाल बनाए।
1: एक ख्वाब, एक मंजिल, मंशियात से पार, पाकिस्तान।
2: Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

0: www.ucp.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
3: ایک نیا انداز،
4: ایک نئی سوچ،
3: एक नई पहचान,
4: एक नई लगन,
3: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान.
4: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से.
3: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
4: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन.
3: जब मिलती है लगन,
4: मेहनत,
3: कामयाबी और खुलूस,
4: तो बनती है
3: यूसीपी की दुनिया.
4: यूसीपी की दुनिया. आप सुन रहे हैं FM 92.6.
3: सुनते रहिए.

0: अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम मंजिल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली अशरफ। और मंजिल प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो आपको गाइड कर सकें, इंस्पायर कर सकें और आपको जो जो भी आपकी मंजिल है उसमें जिस रास्ते पर भी आप गामजन हैं अपनी स्ट्रगल्स बताकर उस मंजिल की तरफ जो रवा दवा लोग हैं उनमें एक इनक्रेजमेंट, एक हौसला, एक कमिटमेंट जगा सकें। और हम फॉर्मेट हमारा होता है इंटरव्यू, और इंटरव्यू में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मुख्तलिफ प्रोफेशनल से। आज एक बहुत ही एक यूनिक सा टॉपिक है, एक ऐसा एरिया हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसकी ज़रूरत बहुत है पाकिस्तान में, लेकिन अभी तक इस पर काम नहीं हुआ। और इसकी सिग्निफिकेंस इतनी ज़्यादा है कि आइंदा आने वाला जो दौर है वो इसी एक कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर ही मूव करेगा। और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो इस मसले का भी शिकार हैं कि उनको डेटा ब्रीच की बहुत सारी शिकायत रहती हैं। और जिस तरह की हर चीज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रही है, हर चीज़ ऑटोमेट हो रही है, तो ऑटोमेशन के साथ साथ जो डेटा है वो गोल्ड है या वो डायमंड है, तो उस डायमंड को प्रोटेक्ट कैसे करना है? क्योंकि अगर आपका वो डायमंड चोरी हो गया तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो एसेट है वो बिल्कुल मैनिपुलेट हो जाएगा और आपका कुछ भी नहीं बचेगा। तो आज हमने टॉपिक एक ऐसा ही रखा है ताकि हम इसके हवाले से बेसिक अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, और जो लोग इसको एज अ करियर चूज़ करना चाहते हैं या जो इसमें आना चाहते हैं, जो ये सर्विसेज के बारे में मालूमात लेना चाहते हैं, वो इससे आगाह हो गए। तो आज हमारे साथ मौजूद है नूर अब्बास मिर्ज़ा। नूर, कैसा लग रहा है आपको हमारे रेडियो शो में आके और हमारे स्टूडियो में आके?
1: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बड़ी अच्छी सर आपकी एक एफर्ट है और मैं इस काविश को सराहता हूँ कि आपने ये मौका दिया है कि आपके रेडियो स्टेशन में बैठ कर हमें बात कर सकें।
0: अच्छा नूर, जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक टर्म है, तो ले मैन के लिए आप थोड़ा सा माइक अगर आप करीब कर लें तो जी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जो टर्म है, एक ले मैन को किस तरह से समझाएंगे कि ये क्या चीज़ है?
1: बिल्कुल ठीक है सर, पहले मैं ज़रा आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपनी कंपनी का। जैसे कि आपको पता है कि मैं जिस कंपनी से बिलोंग करता हूँ, वी आर फ्रॉम अ कंपनी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज में डेटा सेंटर और क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज ऑफर कर रही है। ये दौरे हाजिर की और आने वाले वक्त की एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक नेसेसिटी है, जिसको अब इस स्टेज के ऊपर जाके आप समझ सकते हैं कि एक बेहतर जो है वो शक्ल उसके नज़र आने लगी है। हमने ये सेटअप क्यों किया और इसको बनाने का मकसद क्या था? बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम पाकिस्तान में मौजूद जो कंपनीज़ हैं उनको वाईटी सर्विसेज जो आज के दौर में हमें फॉरेन कंपनी से लेने पड़ रही हैं अगेंस्ट अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ डॉलर्स, उनको पाकिस्तान से प्रोवाइड किया जा सके। आपने बात की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको मद्देनजर रखते हुए इन सारी चीज़ों को प्लान किया गया था। डेटा और इंफॉर्मेशन आज के दौर में एक बहुत अहम चीज़ बन चुकी है। ठीक है, आपने अभी जिक्र किया उसके बारे में कि वो किसी कंपनी के लिए या किसी पर्सन के लिए, फॉर एग्जांपल इफ़ कोई पर्सनालिटी है, वो किसी सियासतदान हैं या वो कोई मिलिट्री ऑफिशियल है, हूएवर इज, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए। सो उसकी प्रोटेक्शन उस वक्त ही पॉसिबल है जब वो उन सारी सर्विसेज को जो अपने मुल्क में मौजूद हों, अपने मुल्क में मौजूद डाटा सेंटर से होस्ट हो रही हूँ और यहीं से दी जा रही हूँ। आज अमेरिका में मौजूद बहुत सारी डाटा सेंटर कंपनीज हैं, उन्होंने अमरीकियों का डाटा अपने पास महफूज रखा हुआ है। आप कभी भी नहीं सुनेंगे कि उनका डाटा किसी दूसरे मुल्क में मौजूद किसी डाटा सेंटर में पड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को बहुत वक्त पहले ही बावर कर लिया था कि जो पर्सनल डाटा है चाहे वो किसी का भी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस तरह के बहुत सारे पैरामीटर्स को नज़र रखते हुए हमने अपनी कंपनी का आगाज़ किया, हमने ये सर्विसेज पाकिस्तान।
0: अच्छा, थोड़ा सा ना, क्योंकि इस प्रोग्राम को आम आवाम भी सुन रही है, हाउसवाइफ्स भी सुन रहे हैं, बच्चे भी सुन रहे हैं, थोड़ा सा ये बता दें कि डेटा स्टोर मतलब लोगों को, क्योंकि इंफॉर्मेशन और डेटा का नहीं पता, तो इनको थोड़ा सा बताएं कि हम जब डिफरेंट जो अब सर्विसेज ले रहे होते हैं, बैंकिंग सर्विसेज हैं या इवन अपनी कोई जो एप्स, डिफरेंट तरह की एप्स हमारी हैं, बैंकिंग एप्स हैं या डिफरेंट पर्सनल एप्स हैं, उन पे जो हम अपना डेटा इंस्टॉल करते हैं, डेटा फीड करते हैं, उस डेटा उसको थोड़ा सा इस कॉन्टेक्स्ट में पीछे से लेके चले, ताकि तमाम लोग जो हैं वो हम फिर हम पहले डेटा की फॉर्म समझा दें हमारे लिसनर्स को और फिर इसकी सिक्योरिटी के ऊपर बात कर लेते हैं।
1: बिल्कुल ठीक है। देखें, हम अभी जिस डाटा की बात करें दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डाटा, ठीक है। आप अपने स्मार्टफोन में बहुत सारी एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, आप अपने लैपटॉप्स में बहुत सारी एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, इसके अलावा जो कोई स्मार्ट डिवाइस इस वक्त इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है
0: जी।
1: एक चीज याद रखें कि आप जितनी सर्विसेज फ्री ले रहे हैं उन सर्विसेज की जो आप कॉस्ट अदा कर रहे हैं ना वो आपकी इन्फॉर्मेशन और आपका डाटा,
0: बिल्कुल ठीक है।
1: सो अगर हम बात करते हैं व्हाट्सएप की तो हम में से मेजोरिटी लोग व्हाट्सएप यूजर्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपने डाउनलोड किया था,
0: जो भी स्मार्टफोन यूजर है वो व्हाट्सएप यूजर है,
1: एवरीथिंग। तो आप बेसिकली अपना डाटा इन द फॉर्म ऑफ जो सर्विस कॉस्ट है वो उनको दे रहे हैं, दे आर गैदरिंग इट, दे आर यूटिलाइजिंग इट। आपने बिग डाटा एनालिसिस के बारे में सुना होगा, ठीक है। आज आप किसी चीज के बारे में बात करेंगे, अगर आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस डाटा है वो ऑन है तो आपको फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या किसी भी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो इन्फॉर्मेशन नजर आने लगती है, हालांकि आप उसके बारे में सर्च नहीं कर रहे थे।
0: बिल्कुल, बात कर रहे होते हैं उससे मुताबिक, कोई चीज खरीदने की बात कर रहे होते हैं और उससे हमें रिलेटेड एड्स आना शुरू हो जाते हैं।
1: बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये चीज बेसिकली हमारे मुल्क में बहुत हद तक अनसिक्योर है, लेकिन फॉरेन में ये चीज बहुत हद तक सिक्योर कर ली गई है। मैं आपको एक बड़ी रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ कि चाइना जैसे मुल्क में अमेज़न वेब सर्विस को नहीं बुलाया गया, ठीक है। अमेज़न वेब सर्विस ट्राइड अ वेरी लॉट टू बी देयर, लेकिन वो वहां पर अपना आपको नहीं करवा सके अप्रूव, ना वो अप्रूव करा सके ना अपनी सर्विसेज दे सके। आज वहां पे अलीबाबा क्लाउड के नाम से उनकी अपनी चल रही है, दे आर कंसर्न टू द डेटा ऑफ एवरीबडी, ठीक है।
0: क्योंकि वंस आप जब कोई शॉपिंग करते हुए या किसी भी तरह से हम अपना डेटा जब उनको देते हैं, अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसमें अपना नाम है, कुछ लोग शिनाख्ती कार्ड नंबर भी मांग लेते हैं, फ़ोन नंबर है, एज है, तो ये सारी चीज़ें, अपना एड्रेस है, और ये हम सारी चीज़ें जब उनको दे रहे होते हैं फॉर द ऑर्डर, तो बैक एंड पे वो उसको डाटा को भी मैनेज कर रहे हैं और उसे कमर्शियल जो डिफरेंट पर्पसेस हैं उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये डाटा का जो है वो फॉर्म है जिसमें आप हम यूज़र जो हैं वो डिफरेंट तरह से डाटा डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को ये देते हैं।
1: बिल्कुल सर।
0: अच्छा, अब इस डेटा की सिक्योरिटी की हवाले से अगर मेरा डेटा फ़र्ज़ करें कि ब्रीच हो भी जाता है तो मैं तो बिल्कुल एक आम शहरी हूँ, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है इससे?
1: देखें, पहली बात यह है कि हमारे मुल्क में स्टैंडर्डाइजेशन ज़रा देर से आती है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेल और वो भी बड़ी तेज़ी से इन चीज़ों की डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप एक कॉमन मैन हैं, आप कोई सियासतदान हैं या आप वट एवर यू आर, ये मसला नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपने आज तक थ्रू योर स्मार्ट डिवाइसेज जितना डाटा इस मुल्क से बाहर प्रोसेस किया है वो डाटा कहीं ना कहीं यूटिलाइज किया जा रहा होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम किसी जगह घूमने जाते हैं, हम वहाँ की तस्वीरें बनाते हैं, आपकी तस्वीरें, मेरी तस्वीरें, किसी और की तस्वीरें, उन सारी तस्वीरों को इकट्ठा करके उस जगह का एक नक्शा बनाया जा सकता है कि वो जगह कितनी गैर महफूज है या वहाँ पर कितनी सिक्योरिटी है या क्या किया जा सकता है। हमारे मुल्क में आज भी साइबर क्राइम जो है वो उस तरह से नहीं होता जिस तरह फॉरेन में होता है, ठीक है। इसलिए फॉरेन में जैसे जैसे साइबर क्राइम डेवलप होता गया वहां पे साइबर सिक्योरिटी भी डेवलप होतेगी। हम अभी इन चीजों को इसलिए नजरअंदाज कर,
0: मतलब अपनी इन्फेंसी में है हम अपने इस सारी चीज में। नूर भाई, हमने अपने जो सामईन है उनको साथ साथ महसूस भी करना है, तो इस वक्त हम लेने जा रहे हैं एक म्यूजिक ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जो डेटा नूर ने हमें समझाया है कि ये किस फॉर्म में हम देते हैं और उसे क्या क्या किया जा सकता है, इसको सिक्योरिटी की सिग्निफिकेंस क्या है इस डेटा सिक्योरिटी की, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा।

0: जी सामाईन, प्रोग्राम है मंजिल और मैं हूं आपका मेजबान अली अशरफ। इसे आप सुनते हैं 92.6 पर। और इसके अलावा स्मार्टफोन पे जो दो बड़े स्टोर्स हैं जिसे एप्पल और एंड्रॉयड, उसमें भी आप ऐप भी हमारी मौजूद है और उसके जरिए आप पूरी दुनिया में इसे सुन सकते हैं। और उम्मीद है आपने म्यूज़िक ब्रेक इन्जॉय की होगी। और हम बात कर रहे थे डेटा और डेटा सिक्योरिटी की। नूर भाई, मैंने ये सुना है, क्योंकि मैं तो नॉन टेक्निकल आदमी हूँ, वो कहते हैं कि डेटा इज़ न्यू गोल्ड।
1: जी बिल्कुल ऐसा ही।
0: तो पहले कहते थे कि ऑयल इज़ गोल्ड, अब कहते हैं डेटा इज़ गोल्ड, इसका क्या मतलब है?
1: देखें जी, इंफॉर्मेशन और डेटा जो है वो आज इसलिए न्यू गोल्ड बन चुका है क्योंकि इसकी बेसिस के ऊपर आप किसी भी मुल्क को डिफॉल्ट कर सकते हैं।
0: अच्छा,
1: इफ़ यू आर एंगेजिंग इन वॉर विद देम, आप उनको जंग शुरू करने से पहले न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अभी हमारे सामने एक बिल्कुल जीती जागती एग्जाम्पल है रशिया और यूक्रेन वॉर की। रशिया ने यूक्रेन में अपनी एंट्री के लिए एक बड़े बहुत दूर तक के इलाके में यूक्रेन में इंटरनेट सर्विसेज को जैम कर लिया था।
0: अच्छा,
1: इसके अलावा उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूज करके उनके बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और कम्युनिकेशन डिवाइसेज को भी जैम कर लिया था। इट वॉज बिकम वेरी इजी फॉर देम टू एंटर इन द कंट्री। खैर, लेटेस्ट स्टेज के ऊपर जब दुनिया में साइबर फोर्सेज ने अपनी वर्किंग स्टार्ट की एंड दे स्टार्ट अटैकिंग रशिया, तो आपने देखा होगा कि रशिया में बहुत सारे बिल बोर्ड जो इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज दे रहे थे उनके ऊपर पुतिन को गालियाँ दी गई, पुतिन के बारे में गलत चीज़ें लिखी गई, और यहाँ तक कि उनकी गवर्नमेंट के बहुत सारे बड़े जो फेमस वो थे वेब लिंक्स, उनको भी हैक कर लिया गया। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस कि आप जब किसी कंपनी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी बंदे को इंटरनेशनली नेशनली डीमोरलाइज या डी वैल्यू या डी फेम करना चाहते हैं तो आप उसकी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। वो इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? वो इंफॉर्मेशन आपको उसकी स्मार्ट डिवाइसेस से मिलती है। वो सारी इंफॉर्मेशन जो उन्होंने लोगों के साथ शेयर की थी वो इंफॉर्मेशन आम पब्लिक में चली जाती है। आज आपने देखा होगा कि यार जब आप ट्विटर पर कोई ट्वीट करते हैं तो न्यूज़ में आपकी ट्वीट दिखाई जाती है, कभी आपकी फेसबुक पोस्ट नहीं दिखाई जाती है या आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं दिखाई जाती है।
0: बिल्कुल।
1: तो ट्विटर की ट्वीट को क्यों यूज़ किया जाता है? बिकॉज ट्विटर इज़ एन ऑथेंटिकेट प्लेटफॉर्म जहाँ से आपकी की गई किसी बात को भी दुनिया में मिसयूज़ भी किया जा सकता है। ठीक है, फेसबुक पे ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि फेसबुक इज़ मोर ऑफ अ बिजनेस मार्केट नाउ। अब वहाँ पे लोग बिजनेस के लिए वो करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो सियासत में अगर जब बात होती है या मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स में बात होती है या किसी और नेशनल इशू के ऊपर बात होती है तो ट्विटर को यूटिलाइज किया जाता है। तो ये वो रीजंस हैं जिसके पीछे बेसिकली इसको अब वाइट गोल्ड कहा जाता है, क्योंकि आज के दौर में ये चीज़ इतनी अहम हो चुकी है कि हमें अब बड़ी तेज़ी से ऐसी पॉलिसीज़ या इस तरह के सॉल्यूशंस या इस तरह की एप्लीकेशंस इंटरनली अपने मुल्क में डेवलप करनी पड़ेंगी जो लोगों के डाटा को महफूज कर सकें, ताकि कल को किसी जंग में हमें ये ना देखना पड़े कि जी हमारा डाटा यूज़ करके दुश्मन हमारे खिलाफ ऐसी स्ट्रेटजीज प्लान कर चुका है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते।
0: अच्छा, आप नूर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर हैं और इसी के हवाले से काम करते हैं, तो पाकिस्तान में इसका स्कोप क्या है?
1: सर, पाकिस्तान में इसका स्कोप
0: या ऑर्गेनाइजेशंस को ये क्यों अडॉप्ट करनी चाहिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैकेनिज्म?
1: सर, पाकिस्तान में इसका स्कोप इस वक्त बहुत ज़्यादा ब्राइट है, एक बात। दूसरी बात ये कि हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं और काम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी हमारी कंपनी इज़ अ डेडिकेटेड डाटा सेंटर कंपनी। हमसे पहले जो लोग इस बिजनेस में काम कर रहे थे वो बेसिकली डेडिकेटेड नहीं थे, वो या तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स थे या GSM सर्विसेज दे रहे थे या कोई और सर्विसेज ऑफर कर रहे थे। उन्होंने एडिशनली इस चीज़ को एक बिजनेस के तौर के ऊपर अडेप्ट कर लिया। हमारा काम ये है, ठीक है, हमारा काम ये है कि हम आपकी कंपनी के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो सॉल्यूशंस, उन चीज़ों को रीडिजाइन कर सकें जो आपके मसले हल कर सकते हैं। दिस इज नॉट अबाउट ओनली हेल्पिंग एन ऑर्गेनाइजेशन।
0: ये सारी सर्विसेज मैं क्यों लूं बीइंग ऑर्गेनाइजेशन? मतलब क्या मुझे फायदा क्या है लेने का, और अगर मैं नहीं लेता तो मुझे नुकसान क्या है?
1: ठीक है, मैं सबसे पहले आपको फायदे बता देता हूँ। देखिए, पाकिस्तान में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और यू आर अ जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन और आप पाकिस्तान के बड़े बड़े कॉरपोरेट जो हैं लीड बेंचेस उनमें आते हैं, तो फिर आपको बड़ी हद तक इस चीज़ की जरूरत है कि आपकी कंपनी के तमाम डिजिटल एसेट्स सिक्योर हों। ठीक है
0: जी,
1: उन एसेट्स को कोई मिसयूज ना कर सके, उन एसेट्स को कोई डेलिबरेटली कहीं पे भी बेच ना सके, और वो एसेट्स आपके लोगों तक महफूज रहें। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल आपके पास, अगर मैं जरा थोड़ा सा पीछे के टाइम की बात बता दूं, जब हमारी कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती थी तो कंपनियां फॉरेन कंपनीज को कॉन्टैक्ट करती थी, उनकी क्लाउड सर्विसेज लेती थी, उनके क्लाउड सॉल्यूशंस अपने पास इंप्लीमेंट करती थी और अपने काम कर रही हैं। इवेंचुअली हमारा सारा डाटा उनके डाटा सेंटर्स में वहां पे जा रहा है। वो इस डाटा को कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं, इवेंचुअली वो अपने बिजनेस प्रोसेसेस में उनको देखते हैं, वो उनके ऊपर स्टडीज कंडक्ट करते हैं, वो ये देखते हैं कि जी पाकिस्तान कितना सिक्योर है फॉर द इन्वेस्टमेंट। आपने मेरा नहीं ख्याल आपने पिछले 20 सालों में भी सुना होगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट की है या किसी अमेरिकन कंपनी ने पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट किया। अगर कोई आई भी हैं तो वो सिर्फ आईटी कंपनीज हैं, वो भी अपने ही मकसद के लिए पाकिस्तान में आई हैं। ठीक हो गया, तो ये एक सबसे बड़ा इशू है। दूसरी चीज़ कि अभी आप सर्विसेज जो बाहर से ले रहे हैं वो सर्विसेज इवेंचुअली फेसिंग अ वेरी सीरियस लेटेंसी, ठीक है, उनमें एक ठीक ठाक लेटेंसी आ रही है। पाकिस्तान में अगर आप डेटा सेंटर से सर्विस लेंगे तो वो पॉसिबल है कि लेटेंसी कम से कम।
0: अच्छा, आप नूर भाई बार बार एक टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, वो शायद हमारे सामईन के लिए इतने ज़्यादा फेमिलियर ना हो उनसे, क्लाउड।
1: जी,
0: तो क्लाउड की थोड़ी सी आप बता देंगे, क्लाउड क्या चीज़ है?
1: सर, क्लाउड बेसिकली जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि क्लाउड एक ऐसा कंप्यूटर है जो किसी का और वो आप यूज कर रहे हैं।
0: अच्छा,
1: अब मैं आपको एक आसान उसमें बता देता हूँ। जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो बेसिकली आपके लिए एक क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन है, लेकिन हमारे लिए नहीं है क्योंकि वो हमारे डेटा सेंटर में होस्टेड एक सर्वर में मौजूद है। ठीक है, तो आप बीइंग एन एंड यूजर, चाहे मोबाइल फोन पे यूज कर रहे हैं, चाहे आप लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं, आप यूजर हैं तो वो आपके लिए क्लाउड है, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो सर्विस या जो वर्चुअल मशीन आप यूज कर रहे हैं वो कहाँ पे होस्ट हुई हुई है। ठीक है, मैं वर्चुअल मशीन भी बताता चलूँ। हम वर्चुअल मशीन्स किन को बोलते हैं? बेसिकली वो मशीन्स जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन वर्चुअली एग्जिस्ट करती हैं क्लाउड में। ये डाटा सिक्योरिटी का एक बहुत अहम पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक कंप्यूटर मौजूद है, अगर ये कंप्यूटर खुदाना खासा खराब हो जाए तो इसमें मौजूद डाटा आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि आप उसको कहीं से रिट्रीव नहीं कर सकते हैं अदर टू यूज डाटा रिट्रीविंग प्रोसेस। लेकिन अगर इसी कंप्यूटर में एक वर्चुअल मशीन हो जो बेसिकली क्लाउड में एग्जिस्ट करती है और वो क्लाउड कहाँ से होस्ट हो रहा है, हमारे डाटा सेंटर से, तो आपके कंप्यूटर को कुछ भी हो जाए आपको सिर्फ कंप्यूटर रिप्लेस करना है, यू कैन गेट बैक योर डाटा।
0: बिल्कुल ठीक है। सामईन, आज हम थोड़ी सी टेकी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी जो सारी सर्विसेज हैं उस सर्विसेज में आप अपना डाटा कहीं ना कहीं दे रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस की जो सबसे बड़ा एसेट्स है वो उनका डाटा सेंटर्स हैं, और वो डाटा सेंटर्स में उनके कस्टमर की इन्फॉर्मेशन पड़ी है, उनके अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन पड़ी है, उनके जो सारे प्रोसेसेस हैं उसकी इन्फॉर्मेशन पड़ी है, और अगर वो डेटा महफूज नहीं तो इसका मतलब कि कंपनी की एग्जिस्टेंस जो है वो खतरे में है। तो हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इस डेटा को महफूज करने के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, और अब लेने जा रहे हैं हम एक म्यूज़िक ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जो लोग इस सर्विस को अटेन करना चाहते हैं, क्योंकि अब ये लोकली बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, पहले हमें डॉलर्स पे करके बाहर से ये सर्विसेज लेना पड़ती थी, लेकिन अब कुछ इंडिविजुअल्स, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आपको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की सर्विसेज भी दे रही हैं, तो उस हवाले से हम बात करेंगे कि उसमें पाकिस्तान के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हमारे साथ रहिएगा, हम म्यूज़िक ब्रेक के बाद आ रहे हैं।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: जी सामिन, प्रोग्राम है मंजिल और मैं हूँ आपका मेज़बान अली अशरफ और आप इसे सुन रहे हैं 92.6 पे। डेटा सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन ब्रीच बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और समझने में शायद थोड़े से मुश्किल हों, लेकिन हम सारे किसी ना किसी तरीके से इस इंडिविजुअल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर इस प्रोसेस का हम हिस्सा हैं, और अगर हम इसका हिस्सा हैं तो हमें इसके ऊपर ध्यान भी देना होगा। और ध्यान देने के लिए हम आज इनसे पूछ रहे हैं, नूर अब्बास से, कि किस तरह से हम इस सारी चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो नूर, आपने ब्रेक पे जाने से पहले बहुत ज़बरदस्त एक बात बताई थी हमें कि आप जब अपना फ़ोन का डाटा, हम कहते हैं कि मैंने तो सारा डाटा डिलीट कर दिया तो अब मैं फ़ोन बेच सकता हूँ, तो बड़ी अच्छी आपने एक बात बताई थी, टिप दी थी हमारे सामीन को कि आप उस डाटा को पहले डिलीट करें, फिर कोई और डाटा, डमी डाटा या कोई भी ऐसा डाटा जो आपका पर्सनल नहीं है उसको आप उसे रीफिल करें और उसको डिलीट करें, क्योंकि रिट्रीव होते हुए लास्ट डाटा रिट्रीव होता है, उससे जो सेकंड लास्ट है या उससे पीछे के जो डाटा है वो रिट्रीव नहीं होते। अच्छा, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपने डाटा को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकती हैं?
1: सर, पहली बात ये कि डेटा और इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है ना, वो हमेशा मैं एक चीज़ बताता हूँ सबको और हर प्लेटफॉर्म पे मैं बोलता हूँ कि डेटा और इन्फॉर्मेशन की सिक्योरिटी कभी भी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर की या साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर की जिम्मेदारी नहीं है। ये हर बंदे की जिम्मेदारी है। हर बंदे को पर्सनली इन चीज़ों के ऊपर ट्रेन होना चाहिए कि जी हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में जो मौजूद डाटा है उसकी क्या वर्थ है, उसकी क्या वैल्यू है और हमें उसको किस तरह प्रोटेक्ट करना है। आपने हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी जिसमें एक एजेंट कोई डाटा लेके भाग जाता है और उसके पीछे उन्होंने सारे मुल्क में तबाही फेरी हुई होती है। बेसिकली ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उनको पता है कि वो हमें शायद फिजिकली तो कोई नुकसान ना पहुंचा सके, लेकिन इस डाटा को यूज़ करके वो हमें इंटरनेशनली इतना डीवैल्यूड कर देगा कि इदारे वो कर सकें। ऑल दो इट इज़ ऑल फिक्शियस, कोई रियलिटी इसमें नहीं होती है, लेकिन दिस इज द थिंग कि उन्होंने आपको बता दिया कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं। तो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज और छोटी ऑर्गेनाइजेशंस जो कंसर्न हैं कि जी हमारा डाटा ब्रीच हो जाता है या हम पे साइबर अटैक्स होते हैं और हम इस कैपेबल नहीं है कि हम इन चीज़ों को सिक्योर कर सकें, तो ऑब्वियसली इफ़ दे आर आईटी कंपनीज, वो बड़े बेहतर तरीके से जानती होंगी फायरवॉल सिक्योरिटी के बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में। अगर वो नॉन आईटी कंपनीज हैं तो दे नीड टू अंडरस्टैंड कि जी साइबर सिक्योरिटी क्या है, आज की साइबर वर्ल्ड में क्या हो रहा है। हैकर को इस चीज़ से कंसर्न नहीं है कि आप कौन हैं, आप क्या काम करते हैं। हैकर को इस चीज़ से कंसर्न है कि आपके स्मार्टफोन में कितनी बैंकिंग एप्लीकेशन मौजूद हैं और उनकी एक्सेस कहां तक जा सकती है। ठीक है, तो एक और टिप यहां पे शेयर कर दूं कि आप जिस मोबाइल फ़ोन पे अपनी बैंकिंग एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उस पर फेसबुक की एप्लीकेशन मत यूज़ करें। ठीक है, क्योंकि फेसबुक इज़ द मोस्ट वल्नरेबल एप्लीकेशन अराउंड द वर्ल्ड। अमेरिका में बहुत स्ट्रांग है, अमेरिका में बहुत सिक्योर है, लेकिन दुनिया के किसी और मुल्क में सिक्योर नहीं है। ठीक हो गया, हम बहैसियत कौम एक बड़ी एक है, एक ऐसी एक्टिविटी है जो हम लोग बहुत करते हैं, हम लोग चेक इन्स बहुत ज़्यादा करते हैं फेसबुक पे। सो योर चेक इन्स आर एक्चुअली मेकिंग योर टाइम लाइन इन देयर डाटा सेंटर। ठीक है, तो वो उस स्पेसिफिक टाइम लाइन पे आपके उस डाटा को यूज़ कर सकते हैं आपके अगेंस्ट। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रा अवॉइड करें। ज़रूरी नहीं है कि दुनिया को बताएंगे जी आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, मैं पिछले दो हफ्ते से इंटरव्यूज़ दे रहा हूँ, मेरे

0: आजादी नशे से, आजादी महरूमियों से।
1: Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

0: क्या आप अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाएंगे? एक पैकेट, एक डील और फिर पुलिस, हथकड़ियाँ, अदालत और जेल, और इसके बाद बदनामी, टूटे हुए रिश्ते और बर्बाद मुस्तकबिल। मंशियात का कारोबार किसी को कामयाब नहीं बनाता, ये सिर्फ दो चीज़ें देता है, जेल और बर्बादी। अपनी जिंदगी को जुर्म की कहानी नहीं, कामयाबी की मिसाल बनाएं।
1: एक ख्वाब, एक मंजिल, मंशियात से पार, पाकिस्तान।
2: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 UCP की दुनिया।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.ek. FM 92.6 to life. Station of the nation.

0: Let's get stress free. Tune into FM 92.6 UCPK Duniya.
1: क्या आप अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाएंगे? एक पैकेट, एक डील और फिर पुलिस, हथकड़ियां, अदालत और जेल, और इसके बाद बदनामी, टूटे हुए रिश्ते और बर्बाद मुस्तकबिल। मंशियात का कारोबार किसी को कामयाब नहीं बनाता, ये सिर्फ दो चीज़ें देता है, जेल और बर्बादी। अपनी जिंदगी को जुर्म की कहानी नहीं, कामयाबी की मिसाल बनाए।
2: एक कौम, एक मंजिल, मंशियात से पार, पाकिस्तान।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: क्या आप अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाएंगे? एक पैकेट, एक डील और फिर पुलिस, हथकड़ियाँ, अदालत और जेल, और इसके बाद बदनामी, टूटे हुए रिश्ते और बर्बाद मुस्तकबिल। मंशियात का कारोबार किसी को कामयाब नहीं बनाता, ये सिर्फ दो चीज़ें देता है, जेल और बर्बादी। अपनी जिंदगी को जुर्म की कहानी नहीं, कामयाबी की मिसाल बनाएं।
1: एक ख्वाब, एक मंजिल, मंशियात से पार, पाकिस्तान।
2: www.musicfeed.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: Number one radio station, FM 92.6, UCP ki duniya. UCP ki duniya.
1: क्या आप अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगाएंगे? एक पैकेट, एक डील और फिर पुलिस, हथकड़ियाँ, अदालत और जेल, और इसके बाद बदनामी, टूटे हुए रिश्ते और बर्बाद मुस्तकबिल। मंशियात का कारोबार किसी को कामयाब नहीं बनाता, ये सिर्फ दो चीज़ें देता है, जेल और बर्बादी। अपनी ज़िंदगी को जुर्म की कहानी नहीं, कामयाबी की मिसाल बनाएं।
2: एक कौम, एक मंजिल, मंशियात से पार, पाकिस्तान।

0: मेरे फादर माई मदर देवर ऑलवेज देयर इन द बुक्स एंड आर्ट्स एंड कल्चर. तो उस सब का एक नॉर्म कह लें घर में था, जिसकी वजह से मैंने लिटरेचर चूज़ किया. ये मेरी पर्सनल इंस्पिरेशन थी. सो फार एज दिस इज़ कंसर्न कि लोग लिटरेचर की तरफ क्यों नहीं जाते, अच्छा लिटरेचर पढ़ क्यों नहीं रहे या प्रोड्यूस क्यों नहीं हो रहा, उसके काफ़ी ज़्यादा रीजनज हैं मेजरली पाकिस्तान में. सबसे बड़ी रीज़न जो बहुत ही कॉमन भी है वो है कि आपके पास दूसरे मीडियम्स आ गए हैं टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. फॉर इंस्टेंस बहुत बड़ा मीडियम उसका सोशल मीडिया. तो आपके पास एक चंक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो एग्जिस्ट करती है एक स्पेक्ट्रम में, एक टाइम पीरियड में, आप उससे बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाते हो और आप रिलीज फील करते हो कि अब मेरे पास बहुत कुछ आ गया. तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो टैंजिबल या रियल नॉलेज जो है उसकी जो वैल्यू है उसको नहीं समझ पा रहे. बहुत ही वॉलेटाइल हो गई है इन्फॉर्मेशन, डेटा एंड एवरीथिंग. तो उस चीज़ से वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे. दूसरी बड़ी चीज़ जो मुझे लगती है वो है क्यूरियोसिटी अमंग द यंगर जनरेशन. और उसके भी कहीं ना कहीं रूट्स जो हैं वो जाके इसी चीज़ से मिलते हैं कि आपके पास सोर्सेज डिफरेंट आ गई हैं. जब वास्ट सोर्सेज हैं और सोर्सेज ऐसी जो बहुत ही मर्क्यूरियल हैं, दे आर नॉट परमानेंट. अब नॉलेज इज समथिंग दैट इज़ वेरी परमानेंट. रीडिंग बुक्स वो आपके साथ स्टे करता है और एक बहुत ही कॉन्क्रीट फॉर्म ऑफ नॉलेज है जो आप लेते हैं और एक्सप्रेस करने का जरिया. तो जब आपके पास दूसरे मीडियम्स आ जाते हैं जो बहुत ही टेम्प्रेरी हैं, बहुत वॉलेटाइल हैं, तो उससे फिर मसले पैदा होते हैं.
1: बिल्कुल आपने सही बात कही कि शायद ना हमारा स्क्रीन टाइम बहुत कम हो गया, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस वक्त हमारे जनरेशन या हमारी जो सोसाइटी है उसकी ज़रूरत है सोशल मीडिया? हम उससे बिल्कुल कट ऑफ भी तो नहीं हो सकते ना. तो अब कुछ अरसे बाद सब कुछ ही मोबाइल्स पे हो जाएगा. लाइक बुक्स तो शायद कम ही है कि रहे, वो है भी ना कि आखिरी सदी है किताबों से इश्क की. तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है?
0: बिल्कुल है, हर चीज़ के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, प्रॉन्स एंड कॉन्स होते हैं. लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है, दी एक्सेस ऑफ एनी थिंग इज़ बैड. सो सोशल मीडिया आई थिंक बहुत ज़्यादा इनकलकेट कर रहा है, इंडिजनाइज हो रहा है हमारी लाइफ्स में. आई वॉज़ लुकिंग एट दिस आर्ट अ फ्यू डेज बैक. तो एक किसी स्टूडेंट का थीसिस था. तो देर वर थ्री पिक्चर्स. पहली पिक्चर में देर इज़ दिस गर्ल हु इज़ सिटिंग और जो आई डोंट नो उसकी एग्जैक्ट वोकैबुलरी क्या है, लेकिन वो जो कंप्यूटर एल्गोरिदम्स होते हैं ना, जो ग्रीन ग्रीन होते हैं वो पिक्चर में, हाँ डॉट्स थे कहीं ना कहीं. तो दूसरी पिक्चर में वो डॉट्स ज़्यादा हो जाते हैं, तीसरी पिक्चर में पूरी पिक्चर ही कंप्यूटराइज हो जाती है. आई डोंट नो इफ दैट्स अ वर्ड. तो इट मींस कि वो आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है. जैसे युवाल नोह हरारी एक बहुत अच्छे राइटर हैं, वो कह रहे हैं कि एट सम पॉइंट रोबोट्स जो हैं या एआई जो है या सोशल मीडिया आजकल जो प्रेवलेंट है वो ह्यूमन बींग्स को कंट्रोल करेगा किसी पॉइंट पे. एंड आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा स्केरी कोई बात हो सकती है.
1: बिल्कुल आप सही बात कह रही हैं. अच्छा, अगर आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में बात की थी कि लिटरेचर और कल्चर से, तो कैसे आप इनको इंटरलिंक करेंगी लिटरेचर और कल्चर को? तो शायद लिटरेचर कल्चर की अक्कासी करते हैं.
0: बिल्कुल, आई थिंक ये दोनों जो हैं वो हैंड इन हैंड जाते हैं. दोनों चीज़ें एक दूसरे पर कोडिपेंडेंट हैं और इनका एक कोरिलेशनल ताल्लुक है आपस में. लिटरेचर आपका कल्चर से प्रोड्यूस होता है और जो आपका कल्चर है वो इवॉल्व होता है लिटरेचर से. अब एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि कल्चर जो है ना वो कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकता. कल्चर हैज़ टू बी इवॉल्विंग ऑल द टाइम, आपको डिवेलप करना है. अब इससे ये मुराद है मेरी कि जो चीज़ें फॉर इंस्टेंस टाइम बींग आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कल्चर में, कहीं ना कहीं जाके वक्त की ज़रूरत की वजह से आपको वो चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी. और सोसाइटी की ना कुछ कल्चरल मैकेनिज़म्स होते हैं जिससे आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो या जिससे कल्चर इवॉल्व होता है. तो वो मैकेनिज़म्स फॉर इंस्टेंस एकेडेमिक लेजिटिमेसी एक मैकेनिज़्म है. फॉर इंस्टेंस अगर हम परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करें, अगर वो किसी सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं हो रही हैं तो उसका एक मैकेनिज़्म ये हो सकता है कि आप उनको एकेडेमिक इंकल्केशन उसकी शुरू कर दें, यानी लोगों को ज़्यादा नॉर्मलाइज करवाएं उस चीज़ को. तो जो कल्चर है वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ, एवोल्यूशन की तरफ तब जाता है जब आप एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो. और इसी की एक्सटेंशन ये कि जब कल्चर डेवलप करता है तो फिर आपका लिटरेचर भी डेवलप करता है.
1: बहुत खूबसूरत बात कही आपने. हम यहीं से दोबारा कंटिन्यू करेंगे. यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का. सुनती रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। हमने बात की लिटरेचर पे, कल्चर पे, परफॉर्मिंग आर्ट्स पे। जैसे हमने शुरू में बात की थी कि तिमसाल निगहत चौधरी से डांस भी सीख रही हैं। तिमसाल सबसे पहले तो ये एक बहुत हमारे मुआशरे में एक बहुत ऑड चीज समझी जाती है के डांस को, ठीक है। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि इस मुआशरे में जहाँ पे इसको अच्छा नहीं समझा जाता और बहुत बुरी राय भी है, तो आपको क्यों लगा कि मैं ये सीखती हूँ और फिर मैं ये करूँगी?
1: तज़ीन, इसका जवाब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से देती हूँ। हिस्ट्री अगर आप पढ़ें तो उसमें एक बहुत ही टैंजिबल एविडेंस है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जो इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, उसमें आपको टैंजिबल एविडेंस मिलता है ऑफ अ डांसिंग गर्ल। इट मीन्स कि डांस और परफॉर्मिंग आर्ट्स इन जनरल इज़ एज ओल्ड एज ह्यूमैनिटी इट्सेल्फ। इसका मतलब है कि डांस और द वेज ऑफ एक्सप्रेशंस, वेज ऑफ कैथारसिस ऑफ मैन हैव बीन एग्जिस्टिंग सिंस द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी इट्सेल्फ। तो मुझे ऐसा लगता है कि समथिंग एज इंडिजिनस, एज इंटरनलाइज्ड टू ह्यूमन बींग्स इट्सेल्फ, उसको बुरा क्यों समझा जाता है अभी, उसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री, बहुत ज़्यादा मसाइल है। कमिंग टू माई इंस्पिरेशन एज अ डांसर, आई थिंक ऑनेस्टली आई वॉज एक्सपोज टू सो मैनी प्रॉब्लम्स बिफोर आई स्टार्टेड डांसिंग। तो डांस जब मैंने परफॉर्म करना शुरू किया तो तब मुझे पता चलना शुरू हुआ कि पीपल आर वेरी रिलक्टेंट टूवर्ड्स परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड एवरीथिंग। तो उसके बाद फिर मैंने इन मसाइल के बारे में पढ़ना शुरू किया। मेरी जो गुरु हैं निगहत चौधरी, उन्होंने उनके काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ हैं इस पर, शी रॉट अ लॉट अबाउट इट, और दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स के शी केम टू पाकिस्तान एंड स्टार्टेड डांसिंग हेयर, क्योंकि वो लोगों को इससे फेमिलियराइज करवाना चाहती थी और एक्सपोज करवाना चाहती थी। एंड आई थिंक वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स इन पीपल इंडिजिनसली हेयर इज द लैक ऑफ एक्सपोजर टूवर्ड्स परफॉर्मिंग आर्ट्स।
0: अच्छा, इसमें ना एक चीज़ है, अभी मेरे पास लास्ट गेस्ट थी, उन्होंने भी ये बात की कि जब हमने बुक फेयर्स की बात की ना, वो रिपोर्टर थी, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे ना ज्यादातर जो आवाम है ना, वो सिर्फ पिक्चर्स के लिए और इंस्टा स्टोरीज के लिए आती है। अब अगर हम यहाँ पे इस बारे में भी बात करें ना, डांस के बारे में स्पेशली, या क्लासिक डांस के बारे में, क्योंकि हम यहाँ पे आप क्लासिक डांस की तरफ आपका फोकस है, तो इसमें भी दो राय हैं। या तो एक आवाम वो है जिसको बहुत ज्यादा कूल समझती है, और एक आवाम वो है जिसकी इसके बारे में बहुत ही सख्त राय है, मतलब बहुत ही गलत अल्फाज का इस्तेमाल भी करती है। तो आपको भी लगता है कि जिस आवाम का इसके बारे में एक्सपोजर नहीं था, आवाम नहीं कहेंगे, क्लास कह लेंगे या एक तबका कह लेंगे, उन्होंने कूल बनने के चक्कर में इसको थोड़ा सा खराब किया?
1: अच्छा, पहली चीज़ ये है कि क्लासिकल जो आपने टर्म बोली, मैं पहले भी इसको डिफाइन कर चुकी हूँ। क्लासिकल कोई भी चीज़ होती है, जैसे क्लासिकल डांस है या क्लासिक्स आप वैसे लिटरेचर में देखते हैं, इट्स समथिंग दैट इज़ टाइमलेस, इट हैज़ सर्वाइव द टेस्ट ऑफ टाइम, और ये काफ़ी एक लंबी लेगेसी लेके चलती है और टेस्ट ऑफ टाइम को सर्वाइव करके एक टच स्टोन बनती है एट द एंड ऑफ द डे, एक स्टैंडर्ड बनती है। There's a reason that it is a classical dance, and there's a reason that there's a technique to it. So a lot of people, jinko ab dance ki na ek specific, this might be new for a lot of people, theory hoti hai, you study dance as well, theek hai, to डांस का एक प्रॉपर सिलेबस है। तो जब आप उस सिलेबस से दूर जाते हैं या टेक्निक से दूर जाते हैं, तो तब आप कूलनेस की तरफ जाते हैं, क्योंकि आप उसको अपनी परसेप्शन, अपनी अंडरस्टैंडिंग के जरिए लेके चल रहे होते हैं। तो आई थिंक प्रॉब्लम वहां पे आती है। दूसरी, आपने बात की कि एक मेजर तबका जो है वो इसकी अंडरस्टैंडिंग से दूर है, तो उसकी क्या वजह है या वो क्यों दूर है? मुझे ऐसा लगता है कि परफॉर्मिंग आर्ट्स, अगर हम सिर्फ पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो वो काफी कंटेस्टेड हो गया है, काफी इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है। इसका मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक क्लास को हमने खुद पे एक स्पेसिफिक पेडिस्टल पे बिठाया है कि आप कल्चर के या आर्ट के कर्ता धरता हैं, यू आर द फोर फादर्स, आई डोंट नो, और आर्ट को आपने संभालना है। तो आर्ट बहुत ज्यादा कंटेस्टेड हो गई है टू द अपर क्लास ऑफ पाकिस्तान, और आई थिंक आर्ट को इंडिजिनाइज या कल्चर को इंडिजिनाइज करने की जरूरत है। अब इंडिजिनाइजेशन का मतलब यह, अब कथक जो वर्ड है वो कथा से निकला है, इसका मतलब होता है स्टोरी टेलिंग। तो आई थिंक कि क्योंकि इसके रूट्स मेजरली, लोग इसको बुरा क्यों समझते हैं, उसके सबसे पहली ये चीज है कि ये हिंदू मिथोलॉजी से डिराइव होता है, और दूसरा इसके कनेक्शंस वो कहते हैं पाकिस्तान से नहीं है ये वो। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें आपको 16 से 18 सेंचुरी में मुगल एरा में काफी ज्यादा डांस के, सूफी डांस के और इवन कथक क्लासिकल डांस के ट्रेसेस मिलते हैं। तो आई डोंट थिंक कि दिस इज समथिंग जिससे हम डिसकनेक्टेड हैं, लेकिन कुछ मैकेनिज्म्स हैं जो मॉडर्न दुनिया में हमें अपनाने की जरूरत है इन ऑर्डर फॉर द लोअर क्लास टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड कल्चर एज वेल। तो आई थिंक आर्ट को इंस्टीट्यूशन से बाहर निकलने की जरूरत है और उस स्पेसिफिक क्लास से बाहर निकलने की जरूरत है ताकि जो लोअर क्लास है उसका एक्सपोजर बढ़ सके।
0: बिल्कुल ऐसे ही। आपको लगता है कि ऐसे जो हम परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करते हैं इनको एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ाना चाहिए?
1: मैं इसी पे ही बात करना चाह रही थी। जैसे मैंने पहले बात की कि कल्चर के कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं चीज़ों को इंटरनलाइज करवाने के, उनको नॉर्मल बनाने के, क्योंकि कल्चर कैन नॉट बी स्टैटिक, इट हैज़ टू बी मूविंग, इट हैज़ टू बी इवॉल्विंग ऑल द टाइम। तो इसका एक मैकेनिज्म ये हो सकता है कि आप डांस को, परफॉर्मिंग आर्ट्स को, या जिस चीज़ को, अच्छी चीज़ को आप इंटरनलाइज करवाना चाह रहे हैं उसको आप एकेडेमिकली लेजिटिमेट कर दें, उसको लेजिटिमाइज कर दें एकेडेमिकली, उसको लेजिटिमेसी दे दें। सो फॉर इंस्टेंस काफी ज्यादा स्कूल्स में करंटली डांस पढ़ाया जा रहा है। इवन निखत चौधरी जो है वो हबीब यूनिवर्सिटी में, शी हैज ट्रेस्ड अप द सिलेबस ऑफ डांस एंड थिएटर, और वो बाकायदा स्टूडेंट्स को एज कोर्सेज पढ़ाया जा रहा है। लेकिन ये काफी हायर लेवल पे हो रहा है। आई थिंक बहुत शुरू से ही इंटरनलाइज करना चाहिए इन द स्टूडेंट्स, दे शुड हैव एन इंक्रीज्ड एक्सपोजर टुवर्ड्स परफॉर्मिंग आर्ट्स एज़ वेल।
0: बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब चूंकि हमारे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है, तो आपने स्टार्टिंग में बात की थी कि आप लिखती भी हैं एज एन राइटर। अगर मैं आपसे पूछूं, आपने बताया कि एज एन डांसर भी बता दिया, एज एन आर्टिस्ट भी बता दिया, एज ए राइटर आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ा?
1: सो बेसिकली व्हेन आई राइट, आई थिंक मॉडर्न जो जनरेशन है उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि दे राइट लिटरली एनीथिंग और विदाउट एनी एकेडमिक रिसर्च और विदाउट एनी एक्सपोजर टू लिटरेचर,
0: बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया
1: कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि लोग पढ़ते नहीं हैं, उनका एक्सपोजर कम है, अंडरस्टैंडिंग कम है, और अगर आप लोकल लैंग्वेजेस में लिखें तो उसमें तो बहुत ज़्यादा चैलेंज होता है। तो लोग, क्योंकि ये एक नॉर्म नहीं बन रही, तो लोग रोज़ बरोज़ इससे दूर जाते जा रहे हैं। द थिंग कि राइटिंग जो है, क्योंकि अब देखिए राइटिंग का सबसे बड़ा मसला ये है कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, आप लिखना कोई आसान काम नहीं है। तो जो वाकई में लिखते हैं उनको पढ़ा नहीं जाता, तो जो
0: वहां से डीमोटिवेट हो जाते हैं।
1: डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो जो लिखना चाहते हैं उनको इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं है, मीडियम्स नहीं है जिनके जरिए वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके।
0: थैंक यू सो मच तिमसाल, आप आई, आपने वक्त निकाला और हमारे सामने ने काफी कुछ सीखा भी होगा, और थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सो मच तज़ीन फॉर हैविंग मी, आई हैड अ लॉट ऑफ फन।
0: आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और सुनते रहिए FM 92.6 UCP।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है। इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है, लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हरगिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
1: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

0: इन्हें इंतहाई हकारत से पुकारा जाता है। ओए छोटे एक ऐसा ही लफ्ज है जो इनकी शख्सियत का हिस्सा बनकर रह गया है। इन्हें इस नाम के अलावा किसी और नाम से पुकारा भी नहीं जाता। इस नाम में इज्जत से कई ज्यादा तहकीर का पहलू पोशीदा है। क्या आपने कभी सोचा है जिन्हें आप ओए छोटे कहकर पुकारते हैं, क्या ये मुनासिब है? क्या आप कभी चाहेंगे कि आपके बच्चे को, जिसका नाम आपने इसकी पैदाइश के वक्त बड़े दुलार और प्यार से रखा था, उसे कोई धुतकारते हुए अल्फाज से पुकारे? नहीं ना, तो एक पल सोचिएगा जरूर कि इन बच्चों पर क्या गुजरती होगी। ये छोटे मेरे और आपके आसपास हर वक्त हर जगह मिल जाते हैं। कचरे की बोरियां उठाए, पॉलिश का सामान लिए, फ्रूट बेचते, सड़कों पर टोकरियां लिए, बाजारों में शॉपर उठाते, मोटर मैकेनिक्स के पास, पंक्चर लगाने वाले के पास, इन बच्चों ने एक पूरे खानदान को अपने कमजोर जिस्म, पुर अज़्म, हिम्मत और हौसले के पीछे पनाह दी होती है। ऐ छोटे की सदा लगाने से पहले बस एक लम्हा, एक लहज ये जहन में याद कर लें कि ये किसी घर के वाहिद बड़े हैं और बड़ों का एहतराम हमें सिखाया गया है। नाबालिग बच्चों का रोजी के हसूल के लिए काम करना चाइल्ड लेबर कहलाता है। बच्चों के काम करने की जो सबसे बड़ी वजह देखने में आई है वो गुर्बत है। महंगाई और बेरोजगारी के इस दौर में इन मजदूरी करने वाले बच्चों के वालिदैन के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो अपने बच्चों को बाआसानी तालीम दिला सकें। बच्चों से इनकी बचपन की खुशियां छीन कर इनसे मशक्कत वाला काम लेना इनकी जात के लिए जहनी, जिस्मानी, समाजी और इखलाकी तौर पर इंतहाई खतरनाक और नुकसानदेह है। क्योंकि जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें और खिलौने होने चाहिए, इस उम्र में इन मासूम हाथों में भारी औजार और होटल के बर्तन थमा दिए जाते हैं।
1: मेरे पापा फौत हो गए हैं, मेरी मामा ने दूसरी शादी कर ली है और मैं होटल में काम करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे शाम को 300 रुपया मिल जाता है। उनमें से मैं अपनी छोटी बहनों के लिए खाने की चीज़ें और दूध वगैरह लेके जाता हूँ, जिसे खाकर वो खुश होती हैं और मुझे भी खुशी महसूस होती है।
0: इन्हीं के बारे में किसी ने कहा है, अफलास की बस्ती में जाके देखो, वहाँ बच्चे तो होते हैं मगर बचपन नहीं होता। अफराते जर भी बच्चों को मजदूरी करने तक लाने की एक अहम वजह है, क्योंकि महंगाई के इस दौर में बच्चों के या घरेलू अखराजात पूरे नहीं होते तो मजबूरन वालिदैन को बच्चों को काम करने पर भेजना पड़ता है। चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन हर साल 12 जून को पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में मनाया जाता है, जिसका मकसद बच्चों को काम करने से रोकना है। कानून बनाने वाले महलों में बैठकर कानून वजा करते हुए इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि असल मसला चाइल्ड लेबर का नहीं बल्कि मुल्क में माशी सूरतेहाल का है, जिसमें करप्शन, रिश्वत और दिन ब दिन बढ़ते हुए टैक्सेस एक अहम मसला है।
2: वहाँ 1,30,00,000 अफराद खत्ते अफलास से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर इफलास की सूरत हाल है कि लोगों को खाने पीने की चीजें मुयसर नहीं है, तो उसमें फिर हमारा शुमार कतार कहाँ, अगर हमारा मुल्क तो वैसे ही कर्जों पे चलने वाला।
0: कौन सी ममता है जो अपने जिगर के टुकड़े को मजदूरी करने वाले औजार थमाए, मगर पेट की भूख और माशरे का तल्ख रवैया इंसान को इस नहज पर ला खड़ा कर देता है कि वो ये सब करने पर मजबूर हो जाता है। एक इंसान होने के नाते हम इस बात के कैसे हामी हो सकते हैं कि फूल से मासूम बच्चों के हाथ काम करते हुए आबलों से भर जाएं? मगर किसी गरीब का गंदगी के ढेर से निवाला तलाश करना भी हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है।
3: आजादी नशे से, आजादी महरूमियों से।
4: इस हुनर कदा में हम सदाकार बनाते हैं। चलना तो सबको आता है, हम उड़ना सिखाते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: 24/7 only on FM 92.6 New City Ki Duniya.
1: Assalamu alaikum listeners, main hoon aapki host Amna Mehmood, mukhatib hoon aap se FM 92.6 UCP ki duniya se. Listeners, aaj hum ek aise topic pe baat karne ja rahe hain jo hum sabse directly relate karta hai. Hum jab bhi internet pe koi post like karte hain, comment karte hain, photo upload karte hain ya kisi website ko visit karte hain ya online shopping karte hain, hum apne piche digital duniya mein ek nishan chhod rahe hote hain. इसको डिजिटल फुटप्रिंट कहा जाता है. आज हम जानेंगे कि ये डिजिटल फुटप्रिंट्स असल में क्या हैं, कंपनीज इन्हें कैसे यूज करती हैं, एआई और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इनका क्या रोल है, और हम अपनी प्राइवेसी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और क्या जो कुछ हम इंटरनेट पर शेयर करते हैं वो वाकई कभी डिलीट भी होता है. हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस मिसबा नाज, जो कि यूसीपी एफवाईटी के सीएस डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल लेक्चरर हैं. आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स की सुपरविजन करती हैं, जिनमें से बहुत से प्रोजेक्ट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर मबनी होते हैं. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम.
1: बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला.
2: थैंक यू सो मच मिस आमना मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए.
1: वक्त जाया किए बगैर हम अपने गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं. सबसे पहले तो आप हमारे सुनने वालों को ये बताएं कि डिजिटल फुटप्रिंट असल में होता क्या है.
2: अगर हम सिंपल अल्फाज में बात करें तो डिजिटल फुटप्रिंट वो डिजिटल निशान है जो हम इंटरनेट यूज करते वक्त छोड़ जाते हैं. बिल्कुल उसी तरह जैसे अगर हम गीली मिट्टी पर नंगे पांव चलें और हमारे पांवों के निशान छूट जाते हैं,
1: बिल्कुल
2: वैसे ही डिजिटल एक्टिविटीज हमारी मॉनिटर होती हैं और उनके निशान भी इंटरनेट पर छूट जाते हैं. जब आप गूगल पर सर्च करते हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कोई वीडियो या कोई पोस्ट लाइक करते हैं, इवन ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो हमारा सारा रिकॉर्ड डिजिटल फुटप्रिंट की फॉर्म में इंटरनेट पर छूट जाता है. बहुत से लोग समझते हैं कि इंटरनेट यूज करने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन असल में आपकी सब एक्टिविटीज का रिकॉर्ड किसी न किसी फॉर्म में मौजूद रहता है. इसी डेटा को कलेक्टिवली हम डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं. आजकल की डिजिटल इकोनॉमी में डिजिटल फुटप्रिंट्स बहुत कीमती एसेट बन चुके हैं, क्योंकि कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस इसी डेटा की बुनियाद पर यूजर बिहेवियर को समझती हैं और अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करती हैं.

0: प्योरली सेव होता है।
1: बिल्कुल।
0: मिसाल के तौर पर अगर आप गूगल पर बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स सर्च करते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट गूगल के डेटा सेंटर तक जाती है, वहाँ सिस्टम्स उस क्वेरी को प्रोसेस करते हैं और रेलिवेंट रिजल्ट्स आपको दिखाते हैं। इस प्रोसेस के दौरान और भी लॉग्स बनते हैं और एनालिटिक्स जो है वो भी साथ में सेव हो जाती है, जो कि बाद में सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए यूज की जाती है। इसी तरह से फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक एंड नेटफ्लिक्स की हम बात करें, उनके पास भी डेटा सेंटर्स होते हैं जो यूजर्स को इंटरेक्शंस को मजीद जो है वो स्ट्रॉन्ग करते हैं और उसको मैनेज करते हैं। यानी हमारा डेटा सिर्फ फोन में नहीं होता बल्कि ग्लोबल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाता है।
1: अच्छा मिस्बा, वेबसाइट्स हमें ट्रैक कैसे करती हैं?
0: आजकल वेबसाइट्स और मोबाइल एप्स यूजर एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज करने के लिए ट्रैकिंग टेक्नोलॉजीज यूज करती हैं। अगर हम इसमें सबसे कॉमन टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो कुकीज हैं, और कुकीज बिल्कुल छोटी सी फाइल्स होती हैं जो ब्राउजर में सेव हो जाती हैं, और वेबसाइट को याद रहता है कि आप पहले वहां पे क्या सर्च कर चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास ट्रैकिंग पिक्सल्स होते हैं जो यूजर एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपने कभी किसी प्रोडक्ट को सर्च किया है ऑनलाइन और फिर उसी प्रोडक्ट के एड्स आपको मुख्तलिफ वेबसाइट पर नजर आने लगते हैं।
1: ऐसा होता है अक्सर।
0: बिल्कुल, और इसी के पीछे यही ट्रैकिंग टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हो रही होती हैं। आजकल डिवाइस फिंगर प्रिंटिंग भी यूज हो रही होती है, जहां ब्राउजर टाइप, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्क्रीन रेजोल्यूशंस और दूसरी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन का जो कम्बिनेशन है उसे भी सेव कर लिया जाता है। ये तमाम ट्रैकिंग टेक्नोलॉजीज यूजर डेटा को कलेक्ट करती हैं, लेकिन असल दिलचस्प बात ये है कि ये डेटा सिर्फ स्टोर नहीं होता। आजकल कंपनीज और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की मदद से इस डेटा को एनालाइज भी कर रहे होते हैं। AI यूजर के ऑनलाइन बिहेवियर को समझने की कोशिश करता है और फिर उसके मुताबिक कॉन्टेंट, प्रोडक्ट्स और अदर रेलिवेंट सर्विसेस आपको रिकमेंड की जा रही होती है।
1: अच्छा, अभी आपने AI का जिक्र किया, वैसे भी आजकल AI का बहुत बूम है, हर जगह पे डिस्कस भी हो रही है, यूज भी हो रही है, तो आप हमारे सुनने वालों को बताएं कि डिजिटल फुटप्रिंट्स का AI के साथ क्या रोल है।
0: ये आप बिल्कुल ऐसे ही कह लें कि अगर गाड़ी को हम AI से रिलेट कर दें कि AI एक गाड़ी है, तो डिजिटल फुटप्रिंट्स उसके लिए एक फ्यूल का रोल प्ले कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स को सीखने के लिए डेटा चाहिए होता है और ये डेटा यूजर की ऑनलाइन एक्टिविटीज से मिल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब जो है वो आपकी वॉच हिस्ट्री, लाइक्स, डिसलाइक्स और वॉच टाइम को एनालाइज करता है। AI एल्गोरिदम्स फिर प्रिडिक्ट करती हैं कि आपको किस किस्म का कंटेंट पसंद है। इसी तरह अगर हम स्पॉटिफाई की बात करें तो स्पॉटिफाई भी आपकी म्यूजिक प्रेफरेंसेस को समझता है। नेटफ्लिक्स आपको उसी के अकॉर्डिंग, उसी डेटा के अकॉर्डिंग मूवी रिकमेंड करता है। AI जितना ज्यादा डेटा देखती है उतनी ही बेहतर प्रेडिक्शंस कर सकती है। इसीलिए डिजिटल फुटप्रिंट्स AI सिस्टम्स की ट्रेनिंग और डिसीजन मेकिंग में सेंट्रल रोल अदा कर रहे होते हैं।
1: अभी आपने जिक्र किया स्पॉटिफाई का, नेटफ्लिक्स का, या इस तरह की और भी जितनी भी एप्स हैं लाइक टिकटॉक हैं, ये हमें इतनी अच्छी रिकमेंडेशंस कैसे देती हैं?
0: जी बिल्कुल, इनके पीछे अगर हम बात करें तो रिकमेंडेड सिस्टम्स हैं और इवन के मशीन लर्निंग जो है वो इसके पीछे इस्तेमाल हो रही होती है। हर दफा जब भी हम कोई वीडियो देखते हैं, इवन कोई पोस्ट लाइक करते हैं, तो सिस्टम हमारे बिहेवियर से सीख रहा होता है। टिकटॉक जो है वो स्पेसिफिकली हमारे वॉच टाइम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। अगर हम किसी वीडियो को पूरा देखते हैं तो सिस्टम समझता है कि अगली दफा आपको वैसा ही कंटेंट दिखाया जाए। नेटफ्लिक्स भी आपकी व्यूइंग हिस्ट्री और रेटिंग्स को एनालाइज करता है और फिर सजेस्ट करता है कि अगली मूवी या सीरीज आपके लिए क्या हो सकती है। यानी जो रिकमेंडेशंस हैं वो आपको रैंडम नहीं मिल रही, ये आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स और मशीन लर्निंग मॉडल की वजह से ही पॉसिबल होती हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये कहूंगी कि नेटफ्लिक्स और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स के पास सिर्फ एक या दो यूजर्स का डेटा नहीं है बल्कि उसके पास करोड़ों की तादाद में यूजर्स का डेटा मौजूद है और हर सेकंड वीडियो देखी जा रही होती हैं, लाइक्स हो रही हैं, इवन सर्चेस हो रही हैं। जब आप इतनी बड़ी मिकदार में डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं तो उसे प्रोसेस करना और उसमें से यूजफुल इंसाइट्स निकालना एक चैलेंज बन जाता है, जिसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, बिग डेटा।
1: बिल्कुल, वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक का। हमारे साथ रहें, सुनते रहें FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। लिसनर्स, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे डिजिटल फुटप्रिंट्स के बारे में, और इस अहम मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस मिसबा नाज, जिन्होंने हमें बड़ी तफसील से बताया कि डिजिटल फुटप्रिंट असल में होता क्या है और ये AI के साथ किस तरह काम कर रहा है, वेबसाइट्स हमें किस तरह ट्रैक करती हैं, और जो वेबसाइट्स या एप्स हमें रिकमेंडेशन देती हैं वो किस तरह डिजिटल फुटप्रिंट्स को यूज करते हुए रिकमेंडेशन देती हैं, बिग डेटा का क्या रोल है और साइबर सिक्योरिटी को डिजिटल फुटप्रिंट्स किस तरह इफेक्ट करते हैं, और इसके साथ ही हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अच्छा मिस, आपने डिजिटल फुटप्रिंट्स के बारे में हमें बहुत ज्यादा डिटेल में बताया, मैं चाहती हूँ कि आप ये भी बताएं कि फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के ऊपर ये कोई इफेक्ट डालता है, अगर डालता है तो किस तरह?
2: जी बिल्कुल, बहुत से लोग समझते हैं कि ऑनलाइन एक्टिविटीज सिर्फ एंटरटेनमेंट की हद तक महदूद होती हैं, लेकिन असल में डिजिटल फुटप्रिंट्स हमारी एजुकेशन और करियर अपॉर्चुनिटीज पर भी बहुत ज्यादा असर छोड़ते हैं। आजकल यूनिवर्सिटीज और कंपनीज कैंडिडेट्स की ऑनलाइन प्रेजेंस को देख सकती हैं। अगर किसी शख्स का ऑनलाइन प्रोफाइल प्रोफेशनल हो, उसमें प्रोजेक्ट्स, उसकी अचीवमेंट्स और कोई भी पॉजिटिव एक्टिविटीज उनको नजर आए तो ये एक प्लस पॉइंट कंसिडर होता है। दूसरी तरफ अगर कोई शख्स सोशल मीडिया पर कोई इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाता है, कोई फेक इन्फॉर्मेशन शेयर करता है या कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट वहां पे पोस्ट करता है तो उसकी रेपुटेशन को जरूर नुकसान पहुंचता है। आज के दौर में लिंक्डइन, गिटहब और प्रोफेशनल पोर्टफोलियोज भी डिजिटल फुटप्रिंट्स का हिस्सा हैं। कई एम्प्लॉयर्स जो है वो कैंडिडेट्स की स्किल्स और प्रोजेक्ट को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इवेलुएट करते हैं, यानी हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स जो है वो सिर्फ हमारी ऑनलाइन हिस्ट्री नहीं दिखा रहे बल्कि ऑब्वियसली हमारे करियर की और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को भी बहुत हद तक इफेक्ट करते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इंटरनेट पर ऐसा ही कंटेंट शेयर करें जो हमारी पर्सनालिटी, स्किल्स और प्रोफेशनलिज्म को रिफ्लेक्ट करता है।
1: बिल्कुल। अच्छा मिस, एक आखिरी सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हम रोज इंटरनेट यूज करते हैं, ऐप इंस्टॉल करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग और बैंकिंग भी यूज करते हैं, ऐसे में अपनी डेटा प्राइवेसी को बेहतर तरीके से कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है?
2: बिल्कुल, ऐसा ही है कि डेटा जो है वो हमारा एक एसेट है। जैसे हम अपने घर और वॉलेट की हिफाजत करते हैं, उसी तरह से हमें अपने डिजिटल डेटा की भी प्रोटेक्शन करना चाहिए।
1: हम अपनी आइडेंटिटी भी कह सकते हैं।
2: जी जी बिल्कुल। आपको कोई फ्री का वर्ड नजर आता है तो इसका मतलब हमेशा हरगिज ये नहीं है कि आपने उसमें मिलने वाली सारी चीजों को फ्री समझना है, बल्कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करें तो हमेशा उसकी परमिशंस को चेक करें। आप लेट सपोज कोई एक फ्लैशलाइट एप्लीकेशन जो है उसे इंस्टॉल कर रहे हैं, बट इंस्टॉलेशन के टाइम पे वो आपके कॉन्टेक्ट, कैमरा और आपकी लोकेशन की परमिशन मांग रही है, तो आपके जहन में ये सवाल जरूर आना चाहिए कि इसे ऐसी इन्फॉर्मेशन की जरूरत आखिर क्यों है। तो इसलिए फ्री वर्ड देखते ही आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी।
1: अच्छा, नॉर्मली इस तरह की अगर हमसे परमिशन मांगी जाती है तो हम बगैर सोचे समझे उसको दे भी देते हैं।
2: जी,
1: क्योंकि
2: जी।
1: उस टाइम हमारा फोकस इंस्टॉलेशन की तरफ होता है।
2: बिल्कुल ऐसा ही है, हमें होता है कि जल्दी से ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए और हम,
1: हाँ जी, अपना, काम ले सके।
2: बिल्कुल, लेकिन ये एहतियात बहुत जरूरी है। और
1: लेकिन मिस, अगर हम उसको अलाउ नहीं करेंगे तो फिर वो इंस्टॉलेशन कम्प्लीट नहीं करेगा?
2: अच्छा, कुछ लिमिट्स में ऐसा है कि अगर मैं किसी लेट सपोज के इन ड्राइव के एप्लीकेशन के साथ लोकेशन नहीं शेयर करती तो वो प्रोसेस नहीं कर सकती, बट उसके अलावा आप अपने माइक्रोफोन या अपनी कैमरा की सेटिंग्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकते हैं कि जब भी एप्लीकेशन में इस्तेमाल करूं सिर्फ उसी दौरान जो है इन चीजों की परमिशन उसके पास जानी चाहिए, बिहाइंड द सीन उसके पास इन इंफॉर्मेशन की एक्सेस नहीं होनी चाहिए। और जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हर जगह पे अपनी डिटेल्स जो है उनको सेव ना करें, जैसे कि हम CNIC, अपना फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, होम एड्रेस, ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पे परमानेंटली सेव कर देते हैं। तो अपनी इस हैबिट को भी चेंज करें कि जब जरूरत है सिर्फ तभी इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड की जाए।
1: बिल्कुल।
2: सोशल मीडिया की जो प्राइवेसी सेटिंग्स हैं उनको भी रेगुलरली चेक करते रहें। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि एक दफा अकाउंट क्रिएशन की है और उसके बाद भूल गए हैं कि हमने इसके पासवर्ड पासवर्ड्स को चेंज करना है। तो हर 2 या 3 महीने के बाद ये प्रैक्टिस रखें कि आपने अपनी सोशल प्लेटफॉर्म्स जो है उनके सिक्योरिटी कोड्स और पासवर्ड्स चेंज करने हैं। बैंक्स तो कुछ बैंक्स इस चीज को प्रीफर करते हैं, ऑटोमेटिकली कुछ ड्यूरेशन के बाद हमारे पासवर्ड्स को चेंज करने के लिए बोलते हैं।
1: बिल्कुल
2: सेम उसी तरह से हम 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन का सिस्टम जो है उसे इनेबल कर सकते हैं। जैसे यूसीपी भी इस पॉलिसी को जो है वो इन्फोर्स कर रही है। इससे ये फायदा होता है कि अगर हमारा पासवर्ड हैकर के पास पहुंच भी गया है तो तब भी जब तक हम दूसरा वेरिफिकेशन कोड प्रोवाइड नहीं करते तो हमारा अकाउंट हैक नहीं हो सकता।
1: बिल्कुल
2: जीमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप और बैंकिंग एप्स जो हैं वो इसी 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इम्पोज कर रही हैं। सेम उसी तरह से हमें पब्लिक वाईफाई के ऊपर सेंसिटिव काम करने से अवॉइड करना चाहिए। जैसे आप किसी एयरपोर्ट पर हैं, होटल में हैं या किसी कैफेटेरिया में हैं, तो वहाँ पे जो वाईफाई की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं उसमें आपने कोशिश करनी है कि आप ऑनलाइन बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स और कोई भी ऑफिस वर्क जिसमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको पब्लिक वाईफाई के ऊपर ना करें, क्योंकि वो सिक्योर नहीं होता।
1: बिल्कुल
2: आजकल जो फिशिंग ईमेल्स हैं उनका बहुत ट्रेंड है, व्हाट्सएप हैक हो रहे हैं,
1: नहीं बल्कि टेक्स्ट मैसेज भी अब तो आने लग गए हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने फिशिंग डेटा या जो भी लिंक्स हैं उनको हमेशा अवॉइड करना है। ये फेक ओरिजिनल जो चीज है उसका फेक वर्जन अवेलेबल होता है जिसको हम ध्यान से देखे बगैर क्लिक करते हैं, और मोस्टली जो है इन केसेस में अमाउंट जो है हमारे बैंक से वो विड्रॉ होती है और हम खुद अपने हाथों से ये काम जो है वो होता हुआ देख रहे होते हैं। तो अगर कोई भी ईमेल या कोई मैसेज ऐसा आए कि योर अकाउंट विल बी ब्लॉक्ड या यू हैव वन अ प्राइस, तो फौरन उस लिंक के ऊपर आपने क्लिक नहीं करना। साइबर क्रिमिनल्स अक्सर फेक वेबसाइट्स बनाकर पासवर्ड्स और बैंकिंग इन्फॉर्मेशन आपसे हासिल कर लेते हैं। और अपने डिजिटल फुटप्रिंट को जरूर ऑडिट करते रहें। महीने में एक दफा रैंडमली आपने गूगल पर अपना नाम लिखा कि मेरे बारे में कैसी इन्फॉर्मेशन, कैसा मटेरियल इंटरनेट पे अवेलेबल है, कि अगर कोई फेक डेटा भी अवेलेबल है तो आप टाइमली उसके बारे में कुछ कर सकें। आपके बारे में कोई पुरानी पोस्ट है अगर तो उसको भी आप टाइमली रिमूव करते रहें। आप नहीं चाहते कि ऐसी कोई चीज अब इंटरनेट पर अवेलेबल रहे। अपने पुराने अकाउंट्स जो अब आप इस्तेमाल नहीं कर रहे उनको डिलीट कर दें ताकि उनके थ्रू आपकी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर वायरल ना हो जाए, क्योंकि इंटरनेट जो है वो खुद ऐसी चीजों को बहुत लंबे अरसे तक अपने पास संभाल कर रखता है। और ब्राउजर्स जो है उनको भी आप लाजमी अपडेटेड रखें। सॉफ्टवेयर अपडेट्स नहीं सिर्फ करने, आपने फीचर्स जो है उनको भी आपने अपडेट करना है। तो इसमें सिक्योरिटी पैचेस भी होते हैं जो कि हैकर्स के नॉन अटैक्स को ब्लॉक कर देते हैं।
1: बिल्कुल,
2: तो इसको रेगुलरली आपने अपडेट करना है। अच्छा, आजकल मैं सामने ये ट्रेंड चल रहा है कि लोग AI या चैटबॉट के साथ अपनी पर्सनल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं और
1: पिक्चर्स अपनी शेयर करते हैं, जो कि बहुत दफा कहा जाता है कि नहीं करनी चाहिए।
2: बिल्कुल, अपनी पिक्चर, अपनी फैमिली के बारे में डिटेल्स, इवन कि अगर किसी का बच्चा बीमार है तो उसकी सारी हिस्ट्री चैटबॉट को दे रहे हैं, जो कि एक डेंजर साइन है कि आप अपना कभी भी सेंसिटिव डेटा जो है वो चैटबॉट के साथ शेयर, क्योंकि उसके पास वो डेटा रिटेन रहता है। आप लेट सपोज 2 साल बाद भी उसके साथ दोबारा कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो आपको वही रेफरेंस देगा कि आपने मुझे पहले,
1: हाँ जी, वो पूरा बताता है कि आपने पहले ये मुझसे शेयर किया हुआ है,
2: आपने मुझे ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा।
1: अच्छा मिस, अगर ब्राउजिंग हिस्ट्री को अगर हम डिलीट कर देते हैं तो उससे भी कोई फायदा हो सकता है या नहीं?
2: जी, हम कुछ हद तक इसके ऊपर कवर कर सकते हैं चीजों को कि हमने अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिलीट कर दिया, जो GPT है उसकी हिस्ट्री को डिलीट कर दिया, तो उससे हमारे फ्यूचर जो ट्रेनिंग है मॉडल की उसको हम एक हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, बट स्टिल
1: लेकिन हमारा डेटा तो ऑलरेडी सेफ हो चुका हुआ है।
2: यस बिल्कुल, तो आप, मैं फिर भी इन्फोर्स करूंगी कि अपनी ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को कभी भी GPT के साथ या AI टूल्स के साथ जो है वो शेयर ना करें। जैसे आप बैंक डिटेल्स, अपने पासवर्ड्स और CNIC की जो इन्फॉर्मेशन है, इवन के अगर आप यूनिवर्सिटी के एनवायरमेंट में है और आपका कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, तो हमारा अब ये एक रूटीन बन चुकी है कि हम ChatGPT से डॉक्यूमेंट्स जनरेट करवाते हैं।
1: बिल्कुल,
2: तो कॉन्फिडेंशियल डेटा, इवन कि आपके स्टूडेंट की अटेंडेंस लिस्ट है, उनका भी कंप्लीट डिटेल जो है वो GPT के साथ शेयर ना करें। तो क्योंकि आपको लगता है कि हमने वो कंटेंट डिलीट कर दिया है, बट फिर भी उसकी एक कॉपी कहीं ना कहीं पर इंटरनेट पर सेव होगी। और एक गोल्डन रूल जो मैं आपके साथ लास्ट पे कहना चाहूंगी,
1: जरूर,
2: कि जो चीज आप बिलबोर्ड पर नहीं लगाना चाहते तो आप कैसे कंफर्टेबल हैं कि आप खुद से इंटरनेट के ऊपर वो चीजें जो हैं वो आप सेव कर रहे हैं। तो आप जब भी कोई पोस्ट करें तो उसको लगाने से 2 दफा पहले जरूर सोचें कि क्या मुझे ये वाकई पोस्ट करना चाहिए, क्या मुझे अपनी फैमिली की पिक्चर्स, अपने बच्चों की पिक्चर्स जो है वो, या अपनी यूनिवर्सिटी के वो पिक्चर जिसमें सारे

0: नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
1: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: क्या आप अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगाएंगे? एक पैकेट, एक डील और फिर पुलिस, हथकड़ियाँ, अदालत और जेल, और इसके बाद बदनामी, टूटे हुए रिश्ते और बर्बाद मुस्तकबिल। मंशियात का कारोबार किसी को कामयाब नहीं बनाता, ये सिर्फ दो चीज़ें देता है, जेल और बर्बादी। अपनी ज़िंदगी को जुर्म की कहानी नहीं, कामयाबी की मिसाल बनाए।
1: एक ख्वाब, एक मंजिल, मंशियात से पार, पाकिस्तान।
2: इस हुनर कदा में हम सदाकार बनाते हैं। चलना तो सबको आता है, हम उड़ना सिखाते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: मैं काम करके थक जाती हूँ।
1: उस्ताद जी मुझे जरा सी गलती पर बहुत मारते हैं।
2: क्या कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र इनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की है? इन पर काम का बोझ ना डालें, इनसे इनके ख्वाब इनका बचपन ना छीने। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी, जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। 14 साल से कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना एक काबिल सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मशक्कत से इनकार करें। बच्चों से मशक्कत की इतला देने के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप 1099 पर रابطہ करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।

0: क्या आप अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाएंगे? एक पैकेट, एक डील और फिर पुलिस, हथकड़ियां, अदालत और जेल, और इसके बाद बदनामी, टूटे हुए रिश्ते और बर्बाद मुस्तकबिल। मंशियात का कारोबार किसी को कामयाब नहीं बनाता, ये सिर्फ दो चीज़ें देता है, जेल और बर्बादी। अपनी जिंदगी को जुर्म की कहानी नहीं, कामयाबी की मिसाल बनाएं।
1: एक ख्वाब, एक मंजिल, मंशियात से पार, पाकिस्तान।

WHO की हालिया तहकीकात के मुताबिक पूरी दुनिया में 2.2 बिलियन अफराद आँखों के मसाइल से दोचार हैं। लिहाजा आप भी एहतियाती तदाबीर अपनाकर अपनी आँखों की हिफाजत कीजिए। अपनी आँखों को गर्दो गुबार और आलूदगी से बचाएं। कंप्यूटर पर काम करते हुए मुसलसल आँखें कंप्यूटर पर मरकूज ना रखें। आँखों का बाकायदगी से मुआयना करवाएं। बच्चों को नोकीली चीजों से हरगिज न खेलने दें। मोबाइल के बेजा और मुसलसल इस्तेमाल से गुरेज करें और घर आते ही फौरन आँखों को ताज़ा और ठंडे पानी से धोएं। इसके अलावा खाने में मुतवाजन गजा और विटामिन ए से भरपूर खुराक इस्तेमाल करें। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से पेश किया जा रहा है।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 यूसुफ की दुनिया। और मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त सुमेर सगीर, सभी सुनने वालों को, अपनी सभी चाहने वालों को और अपनी प्यारे प्यारे सामीन को तहे दिल से कहती हूँ खुश आमदेद, जय अनु, वेलकम, भली करायोसु और खैर आगले। उम्मीद करती हूँ कि आप सब तक ठीक ठाक होंगे और आज का दिन बेहद अच्छा गुजरा होगा। जी जनाब, हम आपके साथ आते हैं प्रोग्राम दियारे गज़ल में, और दियारे गज़ल में हम सुनते हैं गज़लें, ऐसी गज़लें सुनते हैं जो दिल के बहुत करीब होती हैं। उसके अलावा हम आपको माजी के झड़ोकों में से कुछ ऐसी यादें ताज़ा करने का मौका भी देते हैं जो कि हम भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं उन पे धूल पड़ जाती है और उस धूल को साफ करने की ज़रूरत होती है। तो जनाब, आज भी हमारा जो प्रोग्राम है वो मिक्सचर है कुछ फिल्मी गीतों का और कुछ गज़लों का, तो हम ज़रूर सुनेंगे। लेकिन लेकिन लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए कहते हैं ना कि कुछ जब आप किसी से मिलते भी हैं तो आप उनको दवाइयाँ कलमात कहते हैं, आप उनको अस्सलामु अलैकुम कहते हैं कि तुम पर सलामती हो, फिर आपका जवाब देते हैं। तो इसी तरह इसके साथ साथ कोई अच्छी बात जो होती है ना वो भी करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि जब आप किसी से कोई अच्छी बात कर देते हैं जनाब, तो आप यूँ कह लीजिए कि उस मुलाकात का और उस बात का जो मज़ा है वो दुबाला हो जाता है और वो मुलाकात जो है वो याद रह जाती है। तो आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम इसी बातों से करेंगे, बल्कि इस बात से करेंगे कि हम सब के सोचने का जो जाविया होता है वो मुख्तलिफ होता है। हम सब अलग अलग तरीक़ों से सोचते हैं, हम सब अलग अलग तरीक़ों से, आप यूँ कह लीजिए कि हमारा जो मेंटल लेवल है, हमारा जो सोचने का अंदाज है, वो सब अलग है। और इस अलग अंदाज़े फ़िक्र तक पहुंचना हमारे लिए कभी कभी मुश्किल हो जाता है, यानी कभी कभार हम दूसरों को समझ नहीं पाते जो हमारे सामने बैठे हुआ इंसान होता है, हमें नहीं समझ आ रही होती कि वो इंसान क्या कहना चाह रहे हैं या क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि दूसरों को समझने की कोशिश करें, उनको सुनने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके सामने एक इंसान बैठा हो और वो कोई गलत बात नहीं कर रहा हो लेकिन आपको वो बात गलत लग रही हो, तो ज़रा चंद लम्हे अपने आप को उसकी जगह रख के सोचिए, क्योंकि इंसान गलत नहीं होते, बस सोचने का जो अंदाज़ है वो गलत होता है। बस इस चीज़ को बदल लीजिए, ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। चलिए, इस बात के साथ हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं इस पहली गज़ल से। तो आइए सुनते हैं।

अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ। वाह, खूबसूरत आवाज़ सुन रहे थे आप गुलाम अली साहब की, और यकीन मानिए इतने ही खूबसूरत लिरिक्स थे, इतनी ही खूबसूरत शायरी थी, इतनी ही खूबसूरत मौसीकी थी, और मैं तो जैसे खो ही गई थी। और जैसे कहते हैं ना, आपके दिल पे तीर चल जाते हैं, तो इस गज़ल ने हमारे दिलों पे तीर चला दिए थे, और ऐसा लगा था कि जैसे सीधा जाके दिल से टकरा रही है, दिल को गुदगुदा रही है, दिल में जैसे कहते हैं ना कुछ यादें दिल से वाबस्ता, कुछ यादें जो हैं वो ताज़ा कर रही है। तो ये गज़ल मुझे बेहद पसंद आई, उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बेहद पसंद आया होगी। तो जी जनाब, आज जैसा कि मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में आपसे बात की थी कि हम कभी कभार दूसरों को गलत समझते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो गलत होते हैं, बल्कि कभी कभार ये इसलिए भी होता है क्योंकि हम उनकी तरह सोच नहीं रहे होते, या हमें उनके सोचने का अंदाज़ नहीं पता होता, या हमें नहीं पता होता कि वो उस टाइम पे, उस स्पेसिफिक टाइम पे किस सिचुएशन में थे या क्या सोच रहे थे। और ये सोचने की चीज़ें होती भी हैं जनाब, हमें सोचना चाहिए, थोड़ा बहुत तो गौर करना चाहिए ना, और ये गौर करना जो है वो बेहद ज़रूरी भी है, बेहद जिसे आप यूँ कह लीजिए इम्पोर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा विशेष भी है। आप दूसरों को जानने की थोड़ी बहुत जो कोशिश है वो ज़रूर किया करें, पता है क्यों? क्योंकि हम नहीं, हमारे साथ जो हमारा दोस्त बैठा हुआ है, क्या हमारे साथ जो काम करने वाला कोलीग है उसके साथ क्या हो रहा है, वो किस फेज में है। लेकिन एक बात वो ये कि आप अपने ऊपर एक टैग लगवा लीजिए, वो टैग लगवा लीजिए आई एम अवेलेबल, यानी मैं मुयस्सर हूँ। तो जब आप ये टैग लगा लोगे ना, मैं मुयस्सर हूँ, तो यकीन मानिए जो आपका दोस्त परेशान होगा, जो डिप्रेशन में होगा, वो आपके पास आएगा, आपसे बातें करेगा। लोग पता है बातें करने से क्यों कतराते हैं, आपसे अपनी बातें शेयर करने से क्यों डरते हैं? उन्हें डर होता है सिर्फ एक चीज़ का, कहीं आप किसी ऐसे ही दोस्तों की महफिल में बैठकर उसकी उस बात का मजाक ना उड़ा दें, कहीं आप उसकी उस बात को मजाक में ना ले लें, कहीं वो आपका आपके मुंह पे ही मजाक उड़ाना शुरू कर दे। तो ये जो हम हर चीज़ को एक फ़नी तरीके में लेना शुरू कर देते हैं, हाँ हर चीज़ को एक खुशगवार अंदाज में कबूल करना अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ ही एक ज़िंदगी का दूसरा रुख भी होता है ना, जैसे पॉजिटिविटी होती है, नेगेटिविटी होती है, मुस्बत और मनफी रवैये होते हैं, इसी तरह लोग भी होते हैं, उनकी सोच भी होती है, उनके सोचने के जाविये भी होते हैं, एक मनफी होते हैं, एक मुस्बत होता है। लेकिन जनाब ये जो मनफी और मुस्बत रवैये और सोच का जो पहलू और अंदाज है ना, इनको समझना मुझे पता है मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसी तरह जब कोई इंसान चाहता है कि आप उसे सुनो, तो आप उसे सुना करें, आप उसकी मदद करें। आपके दोस्त आपसे घबराते हैं बात करने से, क्योंकि इसलिए हो सकता है कि कल आप किसी और दोस्त के साथ बैठ के उसी बेचारे इंसान के मुंह पे बात कर दें कि अरे इसने तो मुझे ये कहा था, ओहो ये तो इतना बेवकूफ़ था, मत पूछो, 2 साल पहले इसने मुझे ये बात कही थी। वो फिर दोस्ती नहीं होती। हमें इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि बाज़ू का ये जो हम बात करने वाली चीज़ होती है ना, यानी हमने बात की, किसी ने हमसे कोई शेयर किया, या किसी को कोई आदत है जो शायद हमें पता है दूसरों को नहीं पता, हम महफिल में बैठ के उसकी वो आदत का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं होती, ये अच्छा तरीका नहीं होता, ये निहायत गलत बात है। हम अपने बहन भाइयों को ऐसा करते हैं, हम मोस्टली जो हमारे साथ मतलब चलने वाले लोग हैं उनके साथ ऐसा कर देते हैं। तो ये जो चीज़ है ये दिलों में थोड़ी सी दूरी लाती है, दिलों में थोड़ा सा जिससे आप के लिए कुछ ऐसा पैदा करती है जिससे थोड़ा सा आप अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना शुरू कर दें। तो जनाब अवॉइड करें और दोस्ती को जो है वो मजबूत बनाएं, क्योंकि हर रिश्ते में जो सबसे कीमती और अहम चीज़ है वो है दोस्ती, और दोस्ती को निभाना उतना ही मुश्किल है जितना कि पानी पर पानी से पानी लिखना। यानी अगर आप सोचें तो हम दोस्ती करते हुए कितना वक्त हमें लगता है, मुझे कितना वक्त लगता होगा या आपको कितना वक्त लगता होगा, नहीं मुमकिन नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता हो, मुझे बहुत कम वक्त लगता है। दोस्त बनाने में मैं बड़ी माहिर हूँ और मैं बहुत जल्दी जैसे कहते हैं मैं दोस्त बना लेती हूँ, तो वो ऐसा ही है, हम इसको एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं कि ये इतना ही आसान है जितना हम मिट्टी पे बैठे हों ज़मीन पे, वैसे हम सब मिट्टी ही हैं,
तो जैसे मट्टी पे मट्टी से मट्टी लिखना, आप मट्टी पर मट्टी से मट्टी लिख सकते हो, अरे हाँ ऐसी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि हम सब मट्टी के पुतले हैं। तो फिर वो जो दोस्ती करना जो होता है ना, वो उसका जो गुर है, उसका जो तरीका है, वो हम सबको आता है, तो हम बना लेते हैं। निभाना बड़ा मुश्किल होता है, और असल बात ही निभाना होता है। हम दोस्ती के बारे में भी मज़ीद बात करेंगे, लेकिन अभी हम ऐसा करते हैं कि आपको मुन्नी बेगम की खूबसूरत सी आवाज़ में गज़ल सुनाएंगे, जो कि मुझे बेहद पसंद है। यकीन मानिए, जब मैं इस गज़ल को सुनती हूँ तो आई फील वेरी वेरी पॉजिटिव एंड आई फील वेरी वेरी गुड। और इस गज़ल का नाम है तुम पूछो और मैं ना बोलूँ। तो आइए सुनते हैं और फिर वापस आते हैं।

तुम पूछो और मैं ना बताऊं, ऐसे तो हालात नहीं है। ये खूबसूरत सी आवाज़ आप सुन रहे थे मोनी बेगम की, और यकीन मानिए जितनी खूबसूरती से ये गाती हैं, जितनी इनकी खुशगुन आवाज़ है, इतनी ही खूबसूरत वो दिखती हैं। यानी अगर आप कभी इनको सुने, आप अगर YouTube पे जाके इनकी गज़लें सर्च करें और YouTube पे इनको सुने, तो बहुत अच्छा लगता है। यानी कुछ हमारे ऐसा होता है ना, कुछ सिंगर्स ऐसे होते हैं जब वो गा रहे होते हैं तो वो अपनी गाई हुई चीज़ को, उस गायकी को, उस गाने को खुद इंजॉय कर रहे होते हैं, उन गज़लों को खुद इंजॉय कर रहे होते हैं। तो मुन्नी बेगम में ये खासियत थी कि जब भी वो गा रही होती थी तो वो इस एंथुजियाज़म से गा रही होती थी, इस जज्बे से गाती थी कि वो उस चीज़ को खुद भी फील करती थी, और बहुत अच्छा लगता था आँखों के लिए भी। ये एक जैसे आपके लिए जो बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है कि जब आप किसी सिंगर को सुनें, इस तरह उन्हें लाइव देखें और वो खुद भी, यानी आप उनको देख के ऐसा लगे कि वो खुद भी फील कर रहे हैं, तो वो आप भी जो हैं वो डबल उस चीज़ को फील करते हैं, वो चीज़ आप पे डबल असर करती है। तो ये भी एक आर्टिस्ट के, एक बड़े फ़नकार की पहचान होती है कि वो जो चीज़ गा रहे होते हैं उसको वो खुद भी इंजॉय कर रहे होते हैं। मुन्नी बेगम ने ये चीज़ बहुत ही खूबसूरती से की हुई है। मैंने उनके बहुत सारे सॉन्ग सुने हुए, बहुत सारी गज़लें सुनी हुई हैं, तो वो हर चीज़ को ही इतनी ही खूबसूरती से गाती हैं, इतनी ही खुशगुन आवाज़ में गाती हैं और इतनी ही खूबसूरत अंदाज से गाती हैं। जैसे हमारी एक और मुझे सिंगर बहुत पसंद है, तसव्वुर खानम, और वो जो एक स्पेसिफिकली अपना वो नाक को ऐसे करती थी ना, वो उनका एक बड़ा हिट स्टाइल था, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था उनका। उनका एक सॉन्ग भी मुझे बहुत पसंद था, वे सब तो सोनिया हाय वे मनमोनिया, आपने सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना तो जना मैं थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे देती हूँ। ये पाकिस्तान की एक बहुत ही हिट मूवी जो थी रंगीला, उसमें से सॉन्ग लिया गया है, और ये जो है ये मूवी जो है ये रंगीला साहब की है, और इस सॉन्ग में जो है वो आप देखेंगे कि रंगीला और निशो बेगम पे ये सॉन्ग पिक्चराइज हुआ था, और बहुत ही खूबसूरती से ये सॉन्ग पिक्चराइज किया गया था। यानी रंगीला साहब का आपको पता होगा कि रंगीला साहब जो है वो पाकिस्तान के मज़ाहिया अदाकारों में से हैं, और वो हर तरह के जो किरदार थे वो बहुत खूबसूरती से निभाते थे, और फनी करेक्टर्स जो हैं वो उनमें तो उनका कोई जवाब ही नहीं था। बहुत जैसे मुनव्वर शरीफ और रंगीला साहब, लहरी साहब, और हमारे बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, अगर मैंने अभी उनका नाम नहीं ले पा रही तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन सब ने बहुत ही खूबसूरत एक्टिंग की है, बहुत ही अपनी जानदार अदाकारी की वजह से उन्होंने अदाकारी को उस नतीजे पे, मतलब उस जगह पे पहुंचा दिया है जहाँ पे आज हम सब खड़े होकर उनको सलूट करते हैं, उनको सलाम पेश करते हैं। तो ये लेजेंड्स की पहचान होती है, ये बड़े लोगों की पहचान होती है कि वो जब भी कोई काम करते हैं तो इस अंदाज से करते हैं, इस खूबसूरत तरीके से करते हैं कि मेरी और आप जैसे लोगों को वो फिर सदियों तक याद रह जाते हैं। बल्कि ना सिर्फ मुझे और आपको, बल्कि हम सभी को वो याद रह जाते हैं, और उनका वो जो एक असर है, वो असर रसूख जो है वो कायम हो जाता है। तो ये बहुत ही, तो जनाब अभी तो मैंने आपको सॉन्ग्स के बारे में बताया, और मैंने आपको कुछ फ़नकारों के बारे में बताया कि उनका जो अंदाज़ था वो इतना खूबसूरत होता था, और वो इस तरह से गाते थे। जैसे अहमद रुश्दी साहब को भी अगर आप देखें, अगर आप उनको भी सुने, तो उनके 70s 80s में जो सॉन्ग थे वो जब गाते थे ना, जब वो स्टेज पे परफॉर्मेंस दे रहे होते थे, यानी 60s से 70s में अगर आप उनको देखें, 80s में भी अगर आप उनको देखें, तो जब वो स्टेज पे परफॉर्मेंस दे रहे होते थे ना अपनी, तो यकीन मानिए ऐसा लगता था कि स्टेज पे आग लग गई है। यानी उनकी इस चीज़ से रूना लैला भी हमारी बहुत बड़ी मनजीवी फनकारा आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं बेसिकली वो, तो वो भी इतनी ही खूबसूरती से गाती थी, और वो कहती थी कि मैं अहमद रुश्दी के स्टाइल से बहुत मुतासिर हूँ, कि वो जब स्टेज पे गाते हैं, जब वो स्टेज पे आते हैं तो बस एक स्टेज पे भौंचाल आ जाता है, एक माहौल क्रिएट हो जाता है, एक इन्वायरमेंट बन जाता है। रूना लैला मैम जो थी वो अहमद रुश्दी की वैसे भी बहुत बड़ी फ़ैन थी, उनको देख देख के, उनको सुन सुन के उनको गाने का शौक़ जो था वो मज़ीद उभरा, और जब वो म्यूज़िक फील्ड में, यानी म्यूज़िक इंडस्ट्री में आए, जब पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने एज अ प्लेबैक सिंगर अपनी करियर का आगाज़ किया,
तो उनके जो मोस्टली सॉन्ग्स थे वो अहमद रुश्दी साहब के साथ रिकॉर्ड हुए, और वो कहती हैं कि मैं उनको अपना उस्ताद मानती थी, वो मेरी आइडियल थे, और फिर जब मुझे उनके साथ गाने का मौका मिला तो वो मेरे लिए बिल्कुल बहुत ही खुशी का दिन था, और बहुत ही जैसे इंसान की ईद हो जाती है। इसी तरह हमें भी कुछ अपनी गोल्स जो हैं वो सेट करने चाहिए, ताकि हमें पता हो ज़िंदगी में आगे कि हमें क्या करना है और हम ज़िंदगी में चाहते क्या हैं। जैसे कि जितने भी बड़े बड़े नाम हैं उन सब के कोई पैशन थे, उन्होंने अपने गोल्स सेट किए हुए थे, उन्हें पता था कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। इस तरह हमें भी पता होना चाहिए कि हमने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, और अगर कभी हमसे कोई ऐसी सजेशन मांग ले कि जना मुझे आपकी सजेशन चाहिए मैं ज़िंदगी में क्या करूँ, तो दे दीजिए ना, आपका क्या जाता है, दो अल्फाज ही तो बोल लें आपको। अगर आप दो अल्फाज बोलते हैं कि तो शायद उन दो अल्फाजों की वजह से किसी की ज़िंदगी बन जाए, तो बोल दीजिए करे तो प्यार के बोल, तो ऐसे बोल जो दिल को छू जाए। तो जनाब दिल को सबसे ज़्यादा क्या छूता है, ये बताइए मुझे, यानी ऐसे कौन से रिश्ते हैं जो दिल को सबसे ज़्यादा हर्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा दिल के करीब भी होते हैं। याद आया कुछ, अभी हम कुछ ही देर पहले उस टॉपिक पर बात कर रहे थे। जी बिल्कुल, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो दिल की बहुत करीब भी होती है और दिल को बहुत ज़्यादा उदास भी कर देती है, दिल को तोड़ भी देती है। चलिए दोस्ती के बारे में हम बातें करेंगे, लेकिन इसमें उसे कल ब्रेक के बाद, और हम एक खूबसूरत सा ट्रैक भी सुनेंगे, और फिर यकीनन जब आप इस ट्रैक से वापस आएंगे तो मैं आपको कुछ मज़ीद बातें भी बताऊँगी, कुछ मज़ीद सिंगर्स के बारे में, कुछ मज़ीद आर्टिस्ट के बारे में, और कुछ पाकिस्तानी मूवीज़ के बारे में भी आपको बताऊँगी, लेकिन राइट आफ्टर दिस सॉन्ग।

इश्क सच्चा है तो फिर तुमको वादा निभाना होगा, तुमको आना होगा, तुमको आना होगा। अरे वाह, इतनी खूबसूरत शायरी और जब खुशगुन आवाज़ हो शहनशाह गज़ल की, तो जनाब सोने पे सुहागा हो जाता है ना। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। आप ये खूबसूरत सी गज़ल सुन रहे थे और यकीन मानिए, इतना मैं खो गई थी जैसे एक आपकी तसव्वुरात की दुनिया होती है, एक आपके ख्यालों की दुनिया होती है, ख्यालात की दुनिया होती है, और वो एक ऐसी दुनिया होती है जो बहुत खूबसूरत होती है और आपका दिल चाहता है कि आप उसमें खोए रहें। तो मेरा भी दिल चाह रहा था कि मैं अपने तसव्वुरात की दुनिया में, अपने ख्यालात की दुनिया में बस खोई रहूँ और वापस नहीं आऊँ, लेकिन वापस आना पड़ता है। लेकिन यकीन मानिए, बहुत खूबसूरत गज़ल थी। और मैं आपको बताती जाऊँ कि ये जो सॉन्ग है, जो गज़ल थी, ये पाकिस्तान की बहुत ही अमेजिंग मूवी में से ली गई थी। और ये जो सॉन्ग पिक्चराइज हुआ था, ये नदीम बेग पे हुआ था। अब नदीम बेग के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि नदीम बेग पाकिस्तान के मंझे हुए अदाकार हैं। अगर हम उनको लेजेंड कहें तो ये बेजाना होगा। उन्होंने पाकिस्तान की बहुत सारी मूवीज़ में जो है वो अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं और बेहद उम्दा अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। बहुत उम्दा अदाकारी उन्होंने की है। उनकी जोड़ी जो हम बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी और बहुत ज़्यादा हिट भी हुई थी, वो शबनम मैम के साथ हुई थी। और शबनम मैम और नदीम बेग की जो जोड़ी थी, उसको एक समझा जाता था कि ये कामयाबी का, यानी मूवी को हिट कराना है तो, यानी इन दोनों की जोड़ी जो है वो, उनको ये सिंबल समझा जाता था कामयाबी का। और वो इतनी खूबसूरत उनकी अदाकारी होती थी कि मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ मैम शबनम से भी और नदीम बेग से भी। इनके जो मूवीज़ मुझे बेहद पसंद हैं, उनमें जैसे आईना अमेजिंग मूवी है, बंदिश बहुत अच्छी मूवी है, इसके अलावा भी बहुत अमेजिंग मूवीज़ जो हैं उनकी, मुझे देखने को मिली, मुझे मौका मिला। लेकिन नदीम बेग की जो पहली मूवी थी वो चकोरी थी, और वो बहुत ही यानी अमेजिंग मूवी थी। और उस चकोरी मूवी में नदीम बेग ने पहली दफ़ा गाना भी गाया था। हमें से बहुत कम लोगों को पता है कि नदीम बेग जो है वो गा भी सकते हैं, वो गा भी सकते हैं, बहुत अच्छे उन्होंने गाने गाए। बहुत कम उन्होंने गाया, लेकिन जब भी उन्होंने गाया अच्छा गाया। उन्होंने अपनी पहली मूवी जो थी, उनकी पहली जो फिल्म थी, उसमें उन्होंने अपना जो सॉन्ग था वो गाया था, रिकॉर्ड करवाया था। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने सिंगिंग को ज़्यादा तरजीह नहीं दी, उन्होंने तरजीह जो दी वो अदाकारी को दी। और अदाकारी को उन्होंने, जैसे आप यूँ कह लीजिए कि ज़्यादा उन्होंने प्रेफरेंस दी, और अदाकारी उन्होंने ज़्यादा की। तो इसलिए आज भी जब हम उनको देखते हैं, आज भी हम नदीम बेग को देखते रहते हैं, उनकी कुछ मूवीज़ हमें देखने को मिलती हैं, कभी कभार हम उनके इंटरव्यूज़ भी सुनते हैं, तो ये वाकई हमारे लेजेंड्स हैं और इनको हमें वाकई याद रखना चाहिए। अब हम ऐसा करते हैं कि अभी आपको एक खूबसूरत सा ट्रैक सुनाते हैं, और ये ट्रैक है मोहब्बत में सारा जहां जल गया है, ज़मीन जल गई है, आसमां जल गया है। और फिर हम वापस आएंगे और इसके बारे में बात करेंगे।

मोहब्बत पे सारा जहां जल गया है, जमीन जल गई है, आसमान जल गया है। वाओ, अमेजिंग पोएट्री थी, अमेजिंग लिरिक्स थे। और जना, जब खुशगुन और खूबसूरत आवाज़ हो, दिलों को छू जाने वाली आवाज़ हो माला बेगम की, तो दिल कैसे ना कैद में आ जाए इन आवाज़ों के। जी बिल्कुल, ये खूबसूरत सी आवाज़ थी माला बेगम की। और ये जो सॉन्ग हमने लिया था, ये पाकिस्तान की बहुत ही सुपरहिट मूवी इंसानियत में से लिया गया था, जो कि 1967 को रिलीज़ हुई थी। और उसमें जो मरकजी किरदार निभाए थे, वो निभाए थे वहीद मुराद, उसके अलावा ज़ेबा बेगम, तारिक अज़ीज़ भी जो थे वो इस मूवी में थे, और फिरदौस बेगम। और अगर आप स्पेसिफिकली इस सॉन्ग को देखें तो आप देखेंगे कि वहीद मुराद, ज़ेबा बेगम और फिरदौस बेगम जो है, उन तीनों पे ये सॉन्ग जो था वो पिक्चराइज हुआ था। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री इस मूवी के बारे में बताती चलूँ कि ये मूवी वैसे तो बहुत पुरानी है, यानी 1967 को रिलीज़ हुई थी, लेकिन इस मूवी की जो हिस्ट्री है, जो स्टोरी है, वो बहुत ही खूबसूरत है। यानी ये जो मूवी बनाई गई थी, ये एक ऐसे टॉपिक पे बनाई गई थी, जैसे इसका नाम भी इंसानियत है, तो इसमें प्यार के ऊपर इंसानियत को फोकियत दी गई। यानी इसमें ये दिखाया गया था कि हर रिश्ते से बढ़कर इंसानियत है। यानी हम इंसान कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपने मफाद के लिए, यानी जो चीज़ हमें चाहिए होती है, हम उसकी हसूल के लिए ज़िंदगियाँ लगा देते हैं, और हम कहते हैं कि बस वो चीज़ हमारी हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे भी अच्छे लोग होते हैं, कुछ ऐसे भी मेहरबान लोग होते हैं, जो इंसानियत पे अपनी ज़िंदगियाँ वार देते हैं। तो इस मूवी की जो स्टोरी भी है, वो इंसानियत बेस्ड है। यानी इसमें तारिक अज़ीज़ साहब जो हैं, वो ज़ेबा बेगम के हस्बैंड का रोल अदा कर रहे हैं। वहीद मुराद साहब जो हैं और ज़ेबा बेगम जो है, वो भी एक बहुत ही खूबसूरत करेक्टर में है। फिरदौस बेगम ने इसमें बहुत अच्छा और खूबसूरत करेक्टर निभाया था। फिरदौस बेगम ने इसमें एक ऐसा, जिसे आप कह लीजिए कि एक मेंटली डिसेबल्ड इंसान का करेक्टर निभाया था, और बहुत खूबसूरती से निभाया था। और यकीन मानिए, जो सॉन्ग मैं आपको सुना रही थी, मोहब्बत में सारा जहां जल गया, इसमें वो बड़े प्यारा सा वो गाती हैं, और बहुत प्यारे वो एक्सप्रेशन देती हैं। तो इट वॉज अमेजिंग, बहुत अच्छा लगता है आपको ये स्टोरीज़ देख के, ये इस तरह की मूवीज़ देख के, जब आपकी लेजेंड्स आपके सामने परफॉर्म कर रहे हो और इतनी अच्छी अदाकारी हो। तो इंसानियत मूवी को ज़रूर देखिएगा अगर आपके पास मौका हो। थोड़ी सी पुरानी मूवी है, लेकिन बहुत आला है, बहुत अमेजिंग है। आप देखेंगे, आप इसको इंजॉय करेंगे, और आपको स्टोरी बहुत पसंद आएगी। यानी आजकल की हम मूवीज़ देखते हैं, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ भी बन रही हैं, लेकिन स्टोरी में थोड़ा बहुत लैक कर जाती हैं, स्टोरी में थोड़ी बहुत कमी आ जाती है। लेकिन अगर हम अपनी माजी की तरफ नज़र दोहराएँ, तो ज़्यादा जो अहमियत है वो स्टोरी को दी जाती थी, और स्टोरी पर फोकस किया जाता था। तो जनाब, कहते हैं कि वक्त गुजरता जाता है, और वक्त को हम पकड़ नहीं सकते, और गुजरते गुजरते ही हमारे हाथ से कब निकल जाता है, इसका अंदाज़ा हमें कभी हो ही नहीं पाता। तो अब ऐसा हुआ कि वक्त ख़त्म हो गया, और वक्त ख़त्म होते साथ ही हमें क्या करना पड़ता है? बिल्कुल जनाब, हमें लेनी पड़ती है आपसे इजाज़त, इस दुआ के साथ कि ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल पे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लाते रहेगा। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी ज़िंदगी में आसानी लाएं, आसानियाँ पैदा करें, तो दूसरों के लिए भी वही करें जो आप अपने लिए चाहते हैं। बहुत ख्याल रखिएगा, और हमें याद रखिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। स्टे ट्यून्ड टू FM 92.6। और ये आखिरी गज़ल हमारी तरफ से आप सबके लिए तोहफा, तो कहीं भी जाए।

Listen, learn, discover. With radio station FM 92.6 UCB ke duniya.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहसो तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: 24/7 only on FM 92.6 UCP ki duniya.
1: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे. जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं. जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं. जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं. ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं. इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो. अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब.
2: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया.
3: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया.